मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 वैशाख मास की तिथि 29वीं तदनुसार 19 मई 2026 ईस्वी प्रातः के 5:56 होने वाले हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतकट से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री

0: को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रिकेल। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: Prime Minister Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from Norwegian and Indian business and research communities. Earlier, in a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order.

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन स्वामिनी सत्य प्रभा से। विषय है, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन।
1: आज का विषय है सबसे बड़ा ज्ञानी कौन। ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाएं और उनमें अलग अलग विषय के विशेषज्ञ, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। उद्देश्य क्या, एक व्यक्ति है कितना भी विशेषज्ञ बन जाए लेकिन सब शास्त्रों का ज्ञाता नहीं बन सकता। डॉक्टर है वो वकील के क्षेत्र का नॉलेज नहीं रखता, वकील है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र का नॉलेज नहीं रखता। फिर क्या इस प्रश्न का कोई समाधान प्राप्त किया जा सकता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सब विषयों का ज्ञाता हो सकता है, सब शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है। एक समाधान हमें संस्कृत साहित्य में मिलता है, समार्थम सर्वशास्त्राणि विहितानि मनीषिभि स एव सर्वशास्त्रज्ञ यस्य शांतम सदा मनः। सारे शास्त्र बने हैं किसके लिए, शांति के लिए। कोई भी डॉक्टर है शरीर के रोगों की शांति करता है, वकील या जज है सामाजिक रोगों की शांति करता है। हर कहीं शांति की बात है और जिसने शांति से जीना सीख लिया, मन को शांत करना सीख लिया, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि सब विषयों का ज्ञाता बनने के लिए किसी ज्ञान विज्ञान की विशेष शाखा में जाने की जरूरत नहीं, किसी विशेष साइंस की जरूरत नहीं,

0: थोड़ी सी कॉमन सेंस की जरूरत है कि मन को शांत रखें। कैसे संभव है मन की शांति? परीक्षा ध्यान हमें समाधान की दिशा दिखाता है कि यदि मन की शांति चाहते हैं तो प्रतिक्रिया रहित जीवन जीना सीखें। एक्शन करें, रिएक्शन न करें। कैसे संभव है यह स्थिति? एक छोटी सी घटना। एक जैन फकीर हुआ बोगुजू। उसके बारे में कहा जाता है जब वह बच्चा था, एक बुद्ध भिक्षु के पास में रहता था और सफाई का काम किया करता था। एक दिन सफाई का कार्य करते हुए उसके हाथ से बुद्ध की प्रतिमा गिर गई, टूट गई। बड़ा डरा, सोचा गुरु अभी आएंगे और मुझे डांटेंगे, क्या करूं? प्रतिमा को कहीं छुपा दूं? सोच ही रहा था, सामने से गुरु आते दिखाई दे दिए। क्या करें? तर्क से काम लिया, हाथ में टूटी हुई प्रतिमा थी, दोनों हाथ पीछे कर लिए और गुरु से बातें करने लगा। गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जो सूरज सुबह उगता है अस्त क्यों हो जाता है? गुरु ने कहा, बेटा ये तो समय का नियम है, प्रकृति का नियम है, जो जितना समय लेकर आता है समय के बाद चला जाता है। ठीक है गुरुदेव। दूसरा प्रश्न, फूल जो सुबह खिलता है शाम को मुरझा क्यों जाता है? गुरु ने कहा, इसका समाधान भी वही है, फूल जितना समय लेके आता है एक समय के साथ में उसको मुरझाना होता है। तीसरा प्रश्न फिर उस बच्चे ने किया, गुरुदेव कोई बच्चा जन्म लेता है मर क्यों जाता है? गुरु ने कहा, बेटे हर एक के साथ में प्रकृति का नियम जुड़ा हुआ है, समय का, जो जितना समय लेके आता है सामने रहता है उसके बाद में चला जाता है। अब बालक ने साहस बटोरा, दोनों हाथ आगे किए, खंडित प्रतिमा दिखाई और कहा, गुरुदेव लगता है इस प्रतिमा का भी समय आ गया था। जैसे ही गुरु ने देखा, एक बार तो भीतर में चोट सी पहुंची, ये क्या, वह प्रतिमा बहुत प्राचीन और गुरु को भी अपने गुरु के माध्यम से मिली थी। एक क्षण के लिए सहमे, साहस और धैर्य के साथ में कहा, बेटे कोई बात नहीं, मेरे तो जीवन का संध्याकाल सामने है लेकिन तुम्हारे सामने अभी पूरा जीवन है। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, परिस्थितियां आएगी और उस समय तुम इस बात को याद रखना कि जिसका जब जो समय आ जाता है वैसा हो जाता है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन, स्वामिनी सत्यप्रभा से। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का, लेकिन उससे पहले ये अंतराल।

सिटी चैनल सूरतगढ़ और अब लीजिए सुनी कार्यक्रम विवरण। हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीहारा वास्ते। जानकारी का विषय रहेगा बाग लगाने के लिए मिट्टी जांच। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मानस गान भाग संख्या 248। सुप्रभात कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:30। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सच्चाई का महत्व, जीवन में कठिनाइयों से ना घबराएं और हर समस्या का समाधान होता है। सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल, कलाकार होंगी सीमा मिश्रा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। दिन के 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही शीर्षक से और आज का शीर्षक प्यार। सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद गजलें दिन के 12:30 पर। दिन के 12:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान, जानकारी का विषय होगा मूंग की उन्नत खेती। दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बच्चों से जुड़ी समस्याएं व समाधान, चूड़ियों का रखें ख्याल, कुछ बातें पुराने जमाने के जन्मदिन की और किचन टिप्स। शाम 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रक्तदान महादान, नारी शिक्षा का महत्व, जल संरक्षण, युवा देश का भविष्य और आज का इतिहास। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिरायकी। चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:00। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोक रीति रिवाज व परंपराएं, पीएसबी कल्चर के फायदे, सड़क हादसों को कैसे रोका जाए और बाजार भाव और मौसम की जानकारी। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत एक ही फिल्म से, जानकारी और गीत। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो गवर्नमेंट, प्रस्तुतकर्ता होंगे श्रीपाल शर्मा, संयोजक नवीन सिसोदिया। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गंगा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है।

0: हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has appreciated the growth in bilateral trade and investment following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. Attending the India-Norway Business and Research Summit in Oslo, along with Norway Crown Prince Haakon and Prime Minister Jonas Gahr Støre, Mr. Modi underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA, and the consequent creation of 1 million jobs in India.
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: Prime Minister Modi highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India and key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals, and startups. Defence Minister Rajnath Singh has described the Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no-first-use policy, it will not succumb to nuclear blackmail and stands ready to respond firmly to any enemy misadventure. He highlighted India's growing stature on the international stage due to the unprecedented progress achieved under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Mr. Singh invited the international community to partner with India for global peace, shared growth and prosperity, while urging the Indian diaspora to contribute to nation

0: UN Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal chaired a review meeting in New Delhi on the rollout of the much-anticipated water metro services in the country. He said the centre's advanced plans to roll out water metro services in 18 cities with Guwahati among those identified for Phase 1. Cities including Srinagar, Patna, Varanasi, Ayodhya and Prayagraj are also part of Phase 1, while Tejpur and Dibrugarh in Assam have been proposed for Phase 2 of the project. Highlighting the initiative, Mr. Sonowal said the proposed water metro systems is significantly less capital intensive as it utilizes existing waterways with minimal civil infrastructure. The Reserve Bank of India has discontinued the requirement for commercial banks to maintain the investment fluctuation reserve, an additional buffer created to protect against depreciation in the value of investments. In a statement, the RBI said the balance available in the fluctuation reserve as of last Sunday will be transferred to the statutory reserve, general reserve or the balance of profit and loss account. West Bengal government has granted formal sanction for the prosecution of Sandeep Ghosh, former principal of RG Kaur Medical College and Hospital, Kolkata. The legal note action follows an order passed by the Calcutta High Court on the 23rd of August 2024. The investigation pertains to alleged financial irregularities in various procurements and related matters at RG Kaur Medical College and Hospital involving Sandeep Ghosh and three other entities. Government has debunked a claim circulating online alleging that the government is going to issue gold bonds to temples in exchange for temple gold reserves. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, stated that the claim is fake. It added that the government has not made any such statement. U.S. President Donald Trump has said he's holding off a planned military strike on Iran after request from the leaders of Qatar, Saudi Arabia and the UAE as serious negotiations are now underway. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Chennai Super Kings by 5 wickets in Chennai last night to secure a playoff berth. Put into bat first, Chennai Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs. In reply, Sunrisers Hyderabad overhauled the target, losing 5 wickets in 19 overs. Today, Rajasthan Royals will face Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेतीहारा वास्ते। जानकारी का विषय है बाग लगाने के लिए मिट्टी जांच।
2: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, आपने क्षेत्र के माँ कई किसान भाई बाग बगीचा भी लगावे। बाग बगीचा नींबू वर्गीय पौधा का, अमरूद का, बेर का, तरह तरह का बाग लगावे। पर कई बार क्या होया कि आप बाग लगा लिया और जिको अपनो मनमाफिक उत्पादन है वो अपन को मिले। जब आप सोचा भी के कारण है गो, इनके लिए जिको महत्वपूर्ण कारक मानी जो है वो है अपने खेत की माटी। तो अपन ने खेत की माटी की जांच है बाग लगाने पहला अपन जरूर करनी चाहिए। नयो बाग लगाने पहला भी और कई बार पुरानो बाग लगे भी उत्पादन जो कम होने लग जाए तो भी अपन ने बिंगी माटी जाँच भी करानी चाहिए। माटी जांच कराण खातर अपन ने के सावधानी रखनी है बांगो अपन जिक्र करा। पहली बात तो खेत में जे गोबर की खाद रेडेड़ी है तो बिंग है कम कम 2 महीना बाद माटी का नमूना लेना चाहिए। दूसरी बात, जठे गोबर की खाद को ढेर मारेड़ो हो तो बठों माटी को नमूनो अपन कदी नहीं लेना चाहिए। इनके अलावा खेत में जे आप रासायनिक उर्वरक या जिप्सम या अन्य कोई सुधारक डालेड़ो है तो बिंग है 15-20 दिन बाद ही माटी को नमूनो लेनो चाहिए। और माटी को नमूनो लेने का बाद में जब आप भेजा तो बीहू पहला अपन जहाँ सुखाणो चाहिए। कई किसान भाई के भी मिट्टी ने गर्म कर गए या तावड़े में सुखा ले तो वो अपन कौन करनो, अपन माटी को जिको नमूनो है वो छाया में ही सुखाणो चाहिए। अब बात भी करा नमूनो लेने की जगह और टाइम की बात। तो किसान भाइयों, बाग लगाने खातर एक बीघे में कम अपन ने 2 जगह नमूना लेना चाहिए और ए नमूना अलग अलग 2 जगह लेना चाहिए। एक नमूनो अपन जठू लियो है बीह थोड़ी छेती छोड़ गए अपन ने दूसरो नमूनो लेनो चाहिए। बिया तो किसान भाइयों माटी का नमूना कदी भी ले सका, जठ तक हो सके सूखे मौसम में अपन ने नमूनो लेनो चाहिए। अब नमूना लेने की विधि की बात करा, बाग खातर माटी गो नमूनो लेने को जिको तरीको है वो फसलों की माटी को जिको नमूनो ले थोड़ो अलग है। इनको कारण हो है कि भूमि की दशा भी, भूमि की उपजाऊ शक्ति, कंकर

0: पत्थर है या भूमि की गहराई जिकी है, बा फलदार पेड़ां की वृद्धि और उपज पर असर डाले, यूं वास्ते बाग खातर अलग अलग गहराइयों नमूना लेना पड़े अपन ने। भूमि की जिकी ऊपरी सतह भी 6 फुट की गहराई तक अपन ने कुल 7 नमूना एक जगह लेना चाहिए। पहलो नमूनो सतह आधा फुट की गहराई तक लेना चाहिए, दूसरो नमूनो आधे फुट 1 फुट की गहराई तक, तीसरो नमूनो 1 फुट 2 फुट की गहराई तक, चौथो नमूनो 2 फुट ले गए 3 फुट की गहराई तक, पांचवो नमूनो 3 फुट ले गए 4 फुट की गहराई तक, छठो नमूनो 4 फुट ले गए 5 फुट की गहराई तक, और सातवो नमूनो वो है 5 फुट ले गए 6 फुट की गहराई तक लेना चाहिए। एक जगह जिका आप 7 नमूना लिए है वे आपा ने अलग अलग थैलियां में भरना चाहिए। और फिर के काम करना है कि हर थैली में आपा ने एक कार्ड या पर्ची गालनी है जिके गए माँ अपने किसान को नाम, पिता को नाम, गांव को नाम, चक को, तहसील, जिला और मुरबा किला नंबर और जगह ए लिख देना चाहिए। और एक जिकी गहराई ली है बिंगो भी आपने बिंगो पर उल्लेख कर देना चाहिए। 7 थैलियां के अंदर बाकी जिकी 6 चीज़ें जिक्रो करो जो कृषक का नाम, पिता का नाम, ऐ तो सागणी आ जाएगी। और जिकी 7वीं चीज़ अभी आप जिक्रो करो गहराई, बहुत सारी थैलियां पर अलग अलग आ जाएगी, जी 2 फुट है, 1 फुट है, 2 फुट है, इन तरह। अब जिया माटी आप सुखा दी छियाँ के अंदर बिंग बाद आने थैलियों में भर गए, तागों या कोई रबड़ है भी उन्हें बंद कर देना चाहिए। और बिंग बाद में एक जगह जिकी माटी ली आप आ 7 थैलियां ने एक आंगो गुच्छो बना देना चाहिए। इन तरह आ थैलियों ऊपर जिकी आप पर्ची लगाई है, एक पर्ची अंदर भी घाली है, बंग ऊपर भी आपने गहराई लिख देनी चाहिए, 2 फुट, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, इन तरह अपने जरूर लिखनी है। और नमूनों खातर जिकी माटी लिए बिन अच्छी तरह मिला गए, कम प्रत्येक थैली में 0.5 किलो अपने माटी को नमूनों जरूर ले कर रखना है। हाँ, जे जमीन में कोई कंकर पत्थर की परत आवे तो जिकी गहराई पर बा परत आई है बिंगी गहराई और बिंगी मोटाई और बिंगी जगह भाई किसो बिगो है या किसो किलो है वो अलग उमी पर्ची पर आपने लिख देना चाहिए और आपने भी अपने कन्ने लिख गए रख लेना चाहिए। इन तरह जिका नमूना है वे आपने जांच वास्ते प्रयोगशाला में भेज देना चाहिए और फिर बिंगी रिपोर्ट गए हिसाब आपने बाग लगाना चाहिए भी बा माटी आपने भी बाग वास्ते उपयुक्त है या कोनी, या माटी में किसे तत्व की कमी है, किसे उर्वरक देने की जरूरत है, आ बातों को ध्यान में रख गए आप फलों को अधिक उत्पादन ले सका। अब कार्यक्रम को टेम पूरा हो किसान भाइयों, चाला राम राम।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीहर वास्ते, जानकारी का विषय था बाग लगाने के लिए मिट्टी जांच। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए लोक भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लोक भजन धर्मपाल भारती की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 248।

आराध्य से मनचाहा वरदान प्राप्त कर मुनि सुतीक्ष्ण की साध पूरी हुई। प्रभु की इच्छा के अनुसार तब वो उन्हें अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम ले चले। श्री राम लक्ष्मण सीता का आगमन सुन अगस्त्य मुनि उनके दर्शनों को दौड़े। नाना प्रकार से श्री राम की पूजा वंदना करने हेतु जब उन्हें आसन पर बिठाया तो मुनियों का समूह प्रभु दर्शन के लिए एकत्र हो गया। पूरी ऋषि मंडली में श्री राम इस मुद्रा में बैठे हैं कि प्रत्येक उपस्थित जन को वो अपनी ही ओर देखते दिखाई देते हैं। श्री राम ने अगस्त्य मुनि को वहां अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे ऋषि मुनि द्रोही राक्षसों के विनाश का उपाय बताएं। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से दंडक वन में पंचवटी जाकर गौतम मुनि के कठोर शाप का दमन करने की प्रार्थना की।

मानसगान कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भाग संख्या 248। अरण्यकांड में आप सुन रहे थे श्रीकांत पडगांवकर को। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त गुलशन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाजिर हूं आप सबकी खिदमत में लेकर आपका अपना कार्यक्रम सुप्रभात।

दोस्तों, हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही दिशा में सोचना होता है। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती है ताकि हम और अधिक मजबूत बन सकें। हर समस्या के साथ उसके हल के बीज भी जुड़े होते हैं। जब हम धैर्य, समझ और सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो समस्या छोटी पड़ने लगती है और उसका रास्ता स्वाभाविक रूप से खुल जाता है। कई बार समाधान अनुभव, सीख या समय में छिपा होता है, इसलिए घबराने की बजाय समस्या का विश्लेषण करके कदम उठाना चाहिए। दूसरों से सलाह लेना, अपनी मानसिकता बदलना और छोटे छोटे प्रयोग करना अक्सर बड़े फलक खोल देता है। याद रखें कि हर असफल प्रयास भी एक समाधान की दिशा में सीख है, इसलिए हार न माने बल्कि सीखते चलें। विश्वास

कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती है और जीवन की सार्थकता को बढ़ाती है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार बनता है, वैसे ही मनुष्य विपत्तियों का साहस से सामना करके व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है।

कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती है और जीवन की सार्थकता को बढ़ाती है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार बनता है, वैसे ही मनुष्य विपत्तियों का साहस से सामना करके व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है। मुश्किलें आना जीवन का नियम है, पर हार नहीं मानना ही हमारा कर्म है। धैर्य रखकर और शांति से चिंतन कर हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कठिन हालातों में निराश नहीं होना चाहिए, विकट परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में फिल्म काला पत्थर से। संगीत था राजेश रोशन का, गीत के बोल थे साहिर के। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि संसार के महान व्यक्ति जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सरदार पटेल जैसे व्यक्तियों ने संघर्ष के द्वारा ही सफलता पाई। असफलताएँ और विफलताएँ हमें केवल यही दिखाती हैं कि हम क्या सीख सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। संकल्प लेकर मन को दृढ़ कर लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। सकारात्मक रहने और कठिन हालात से दो दो हाथ करने की शक्ति से ही समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। जीवन में वसंत सदैव नहीं रहते, पतझड़ हमेशा राहों में मिलते रहेंगे। इसलिए कठिनाइयों से घबराए बिना साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म इम्तिहान से। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत के बोल थे मजरू के। दोस्तों, जैसे नीम स्वाद में कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए लाभदायक होता है, वैसे ही सच भी सुनने में कड़वा लगता है लेकिन जिंदगी के लिए फायदेमंद होता है। झूठ सिर्फ कुछ दिन का साथ देता है मगर सच हमारे साथ हमेशा रहता है। और कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और ये याद भी रखना पड़ता है कहाँ क्या झूठ बोला था। परंतु ऐसा सच के साथ नहीं, उसकी खास बात यह है कि उसे याद नहीं रखना पड़ता। सच बोलने की आदत व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाती है और समाज में विश्वास और सम्मान पैदा करती है। सच्चाई से मन को शांति मिलती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और दीर्घकालिक सफलता हासिल होती है। इसके विपरीत झूठ अस्थायी लाभ देता है पर अंततः भरोसा और प्रतिष्ठा खो देता है।

ये गीत आप सुन रहे थे सच्चा झूठा से, किशोर कुमार की आवाज़ में। दोस्तों, सच्चा व्यक्ति बेझिझक और निडर रहता है, उसे आत्मसंतोष मिलता है, सच्चाई से रिश्तों में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ता है, समाज में मेलजोल अच्छा रहता है। इसलिए सच बोलने से डरना नहीं चाहिए।

0: इस गीत के साथ सुप्रभात कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार प्रभात। ये समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
2: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के

0: क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक

0: की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने

0: युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में CBI ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। CBI का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RGKR मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RGKR Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: EFTA countries se Bharat mein अगले 15 वर्षों में $100 billion इन्वेस्टमेंट और 1 million जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है।
2: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
3: 2030 tak humne 500 gigawatt clean energy aur 5 million ton green hydrogen produce karne ka target rakha hai. Green energy investment नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
2: The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business.

0: रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
1: सरबराह मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज्यादा शुरका और 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तहत खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जत मआब शाह हेराल्ड वी की तरफ से वजीर आजम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सी वी जॉर्ज ने वजीर आजम के नॉर्वे दौरे पर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुलकाहिल समुद्री पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी काबिल तजदीद तवानाई दिफा पायदारी और तजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की क्लीदी शराकतदारी को मजबूत करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाली यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोभा जाती ताउन में मददगार साबित होगी। साबिका सरबराह कॉन्फ्रेंस सन 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जिन शोभों पर तवज्जो दी जाएगी उनमें तकनीक और इख्तिरा पायदारी काबिल तजदीद तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तिजारत और माशी शराकत दारी समझौते के निफाज के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि तिजारत और सरमाकारी के रबतों को मजीद बढ़ाया जाए। फिलहाल इस ब्लॉक में भारत की दो तरफा तिजारत $19 अरब है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस खत्ते के साथ कसीर रुखी ताउन में भी मददगार साबित होगी और ये आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर ख्याल का तबादला करने का एक मौका फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क आइसलैंड और फिनलैंड के वजीर आजम के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। ओस्लो नॉर्वे से संगीता गोड़बोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज 2 रोजा सरकारी दौरे के सिलसिले में इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी इटली की वजीर आजम मेलोनी के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत को एक मजबूत पुरेतमाद और बासलाहियत मुल्क में बदलने की अलामत करार दिया है। कल हनोई में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वो किसी भी तरह से न्यूक्लियाई ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिमजुई का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हासिल की गई बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अलाक्वामी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड ईरान नीदरलैंड स्वीडन और मॉरिशस के अपने हम मनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें कीं। ये मीटिंग कल जिनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत दवासाजी रेजिलियंट पब्लिक सेहत निज़ाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: लोकसभा स्पीकर की जानिब से हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल

0: 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रेसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बी वी आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे, जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गांव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी, माशी और सकाफती नुकसान की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा

0: अब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गांव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी माशी और सकाफती नुकसान की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीजन में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में अवामी खिदमत के मराकज में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड्स और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाब्तगियों और काले धन को जायज बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की जांच को रोके रखा। जनाब अधिकारी ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर आरएन रवि मजाज अथॉरिटी के तौर पर एफआईआर, केस रिकॉर्ड और हकाइक की जांच से मुतमईन हैं और इस बात के हक में हैं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज का मुल्क के 18 शहरों में वाटर मेट्रो खिदमात शुरू करने का मंसूबा है जिसमें गुवाहाटी को मरहला एक के तहत नामजद किया गया है। इसके अलावा श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर भी मरहला एक में शामिल हैं जबकि आसाम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट के मरहला दो में शामिल करने की तजवीज है। वजारत ने साथ ही साथ कौमी वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का मसौदा बैन वजारती मुशावरत के लिए तकसीम किया है जिसमें शहरी आबी ट्रांसपोर्ट को हतमी शक्ल देने के कौमी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। भारत के रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों की जानिब से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR बरकरार रखने की ज़रूरत खत्म कर दी है। IFR इजाफी बफर होता है जो सरमायाकारी की कदर में गिरावट से तहफ्फुज के लिए कायम किया जाता है। हुकूमत ने ऑनलाइन गर्दिश कर रहे उन दावों को मुस्तरद किया है जिनमें कहा गया था कि हुकूमत मंदिरों में रखे सोने के बदले मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। हकाइक की जांच करने वाली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा फर्जी है। PIB ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो फर्जी दावों से दूर रहें और मुस्तनद मालूमात के लिए हमेशा सरकारी ज़राए का इस्तेमाल करें। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज शदीद गर्मी के हालात की पेशगोई की है। आज दिन में साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कतर, सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात के रहनुमाओं की दरख्वास्तों के बाद ईरान के खिलाफ मंसूबा बंद फौजी कार्रवाई करने से रुक गए हैं जबकि मुतालिका फरीकों के दरमियान संजीदा मुजाकरात जारी हैं। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबार ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के दौरे के दौरान उन्हें नॉर्वे के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी अदम इस्तेहकाम के माहौल के दरमियान भारत और यूरोप के ताल्लुकात सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। वहीं अखबार ने ईरान पर हमले की तैयारियों के तेज होने से मुतालिक खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि मुजाकिरात में तातुल के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों में इस बात के इम्कान बढ़ गए हैं कि अमरीका एक बार फिर ईरान के खिलाफ

इस भजन के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। इससे पहले श्री मोदी ने कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्राउन प्रिंस हॉकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद निवेश में हुई बढ़ोतरी की सराहना की।
1: रिसर्च एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, AI, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी

0: दी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। 2 दिन की ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में रुकावट के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: राजस्थान देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनने के बाद अब राजस्थान नमो भारत नेटवर्क से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रस्तावित दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर नई दिल्ली के सराय कालेखां से शुरू होकर गुरुग्राम होते हुए खैरथल, अलवर, नीमराना, बहरोड और सोतानाला तक पहुंचेगा। परियोजना के तहत कुल 196 किलोमीटर लंबा नेटवर्क विकसित किया जाएगा जिसमें 22 मुख्य स्टेशन प्रस्तावित है। राज्य में ये कॉरिडोर 91 किलोमीटर लंबा होगा और 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। RRTS ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी जिससे दिल्ली NCR राजस्थान के बीच आवागमन तेज होगा। राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिमी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह की ओर से गठित 6 सदस्यीय विशेष समिति कल कोटा पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का दौरा कर लूनी रिच्छा स्टेशन पर खड़े प्रभावित कोच का निरीक्षण किया और अग्निकांड से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी ली। गौरतलब है कि ट्रेन के AC कोच में लगी आग की घटना के बाद रेल कर्मियों की तत्परता और आपातकालीन प्रबंधन से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। राजस्थान पुलिस की ओर से प्रदेश भर में 2 दिन का मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। इसके तहत कुल 810 नाकाबंदी पॉइंट्स लगाकर 47,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई। वहीं 274 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक VK सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान बीकानेर, जोधपुर और जयपुर रेंज के सभी प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की गई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही तस्करों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर मामले दर्ज किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। समूचा राज्य भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पश्चिमी गर्म हवाओं के असर से पारे में उछाल आया है। लू के थपेड़ों के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। झुलसाती धूप को देखते हुए लोग दिन के समय घरों से निकलने में बच रहे हैं और सड़कों पर आवाजाही कम देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल 2 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज हुआ। वहीं 10 स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ और पिलानी सबसे गर्म रहे। वहीं जालौर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर मापा गया। आज सरहदी जिलों और दक्षिणी पूर्वी भागों में हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट बताया है। इन जिलों में दिन का पारा 42 से 47 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से चिन्हित ग्राम पंचायतों में जनजाति गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संतृप्ति कैंप आयोजित हो रहे हैं।

0: जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल इस संबंध में 17 विभागों की बैठक ली। इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने शिविरों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उधर जनजाति जिले डूंगरपुर में जिला कलेक्टर देशलदान ने अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
1: जिला कलेक्टर देशलदान ने सभी विभागों को दायित्व सौंपते हुए इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहे। अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की ओर से 25 तरह के कार्य किए जाएंगे। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
0: राज्य सरकार ने विभिन्न खेलों के पदक विजेता युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नीति को मजबूती से लागू किया है। इसके तहत अब तक 186 खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। इनमें क्रिकेट, शूटिंग, घुड़सवारी और कबड्डी सहित कई खेल शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले 1786 खिलाड़ियों को लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं सीमा मिश्रा।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। हम आपको सुनवा रहे हैं सीमा मिश्रा के गाए लोक संगीत।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम और उमंगल अब यहीं पर समाप्त होता है। आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा को। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

इन हवाओं में मोहब्बत रहेगी, इन फिजाओं में मोहब्बत रहेगी, कुछ रहे या ना रहे इस धरती पर, मगर चारों दिशाओं में मोहब्बत रहेगी।

0: ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज में। फिल्म का नाम था सिर्फ तुम। अगला गीत आपको सुनवाते हैं इस अंतराल के बाद।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: रहे न कोई गुंजाइश, तुझे इतना चाहूं, तू ही बता और तुझे कितना चाहूं। रूह की प्यास फिर भी कम नहीं होती, कम लगता है मुझे तुझे जितना चाहूं।

ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म राज से। संगीत था नदीम शरवन का, गीत के बोल थे समीर के। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। बेवजह चेहरे पर मुस्कान आए तो समझो इश्क है, याद में उनकी आंख भर आए तो समझो इश्क है। इश्क वो नहीं दुनिया में जो करते हैं दुनिया वाले, जिस्म के दायरे से पार चला जाए तो समझो इश्क है।

इंदिवर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे अनु मलिक, आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की, और ये गीत हमने लिया था फिल्म नाजायज से। जो तुमने कहा नहीं वो भी सुना है मैंने, सारे जहां में सिर्फ तुझको चुना है मैंने। कई सदियों से कर रहा हूं इंतजार तेरा, इस बार भी यही ख्वाब बुना है मैंने।

ये गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म वास्तव से। संगीत था जतिन ललित का, गीत के बोल थे समीर के। मोहब्बत में दिखावा नहीं, निभाना पड़ता है। वक्त हो या ना हो, प्यार को जताना पड़ता है। इश्क लगता है मुझे कोई मुश्किल सवाल, मैं भूलता नहीं और तुम्हें याद दिलाना पड़ता है।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गा मेरे मन गा।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को गुलशन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाजिर हूं आप सबकी खिदमत में लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम गा मेरे मन का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मिलन फिल्म के इस गीत के साथ। एक बात है जो तुम्हें बताना चाहता हूं, एक बात है जो तुम्हें बताना चाहता हूं, एक बात है जो तुमसे छुपाना चाहता हूं। बहुत देख चुका हूं तुम्हें ख्वाबों में अपने, अब मैं हकीकत में तुम्हें पाना चाहता हूं।

ये गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में फिल्म मिलन से। अपने हिस्से की तमाम खुशियां तुझ पर वार दूं, जिंदगी का हर पल तेरी मोहब्बत में गुजार दूं। तूने जो सुना होगा किससे कहानियों में अक्सर, आ मेरी जान तुझे मैं हकीकत में उतना प्यार दूं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम का अगला गीत इस अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मेरी रूह को जब से छू गए हो तुम, तब से मेरी जिंदगी बन गए हो तुम। अब मैं अपने आप से नहीं मिलता, जब से मुझे मिलकर गए हो तुम। सोचता हूं तो तुम्हारी खुशबू आती है, इस कदर जहन में उतर गए हो तुम।

ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम था जान तेरे नाम। मेरे दिन तुम्हारे हैं, मेरी रातें तुम्हारी है, मेरी सुबह तुमसे है, मेरी शामें तुम्हारी है। तेरे सिवा अब मेरी कोई तमन्ना ही नहीं, मेरे दिल की सभी ख्वाहिशें तुम्हारी है।

वक्त हमारा है। इस फिल्म में आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को। तुम सुनो तो एक शायरी कह लूं, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी कह लूं। मोहब्बत के उसूल नहीं पता मुझे, तुमसे जो है उसे आशिकी कह लूं।

एक लड़का एक लड़की। इस फिल्म में आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम को। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गा मेरे मन गा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मेरे ये अल्फाज तेरे लिए हैं, मेरी ये आवाज़ तेरे लिए है। दिल की धड़कने ही नहीं, मेरी हर सांस तेरे लिए है। तेरे बगैर जीना ही नहीं मुझे, दिल मेरा उदास तेरे लिए है।

ज़हन में तेरा ख्याल जब बहुत देर तक रहता है, आँखों के सामने तेरा चेहरा फिर रात भर रहता है। बस यूँ समझ ले तू कि जिंदा हूँ मैं तेरी वजह से, इन रगों में खून नहीं बहता, तेरा प्यार बहता है।

ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ में फिल्म सड़क से। संगीत था नदीम श्रवण का, गीत के बोल थे समीर के। तेरी मोहब्बत में जिंदगी तमाम कर दी है, एक जान है मेरी वो तेरे नाम कर दी है। और तो कुछ है नहीं जो करता तेरे हवाले, अपनी ये सांसें मैंने तेरी गुलाम कर दी है।

ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। फिल्म का नाम था फूल और कांटे। संगीत था नदीम श्रवण का, गीत के बोल थे समीर के।

इस गीत के साथ अपने दोस्त गुलशन को अब इजाज़त दें। जाते जाते आपसे बस इतना ही कहूँगा, खुश रहें, मस्त रहें और सुनते रहें आकाशवाणी सूरतगढ़। दुआओं में याद रखना। नमस्कार।

का ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं। अब श्रोता सुने फिल्म संगीत।

अभी आपने दामिनी इस फिल्म का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं महाराजा इस फिल्म का ये गीत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीत लिखा समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

आइए अब सुनते हैं मोहरा, इस फिल्म का ये गीत पंकज उधाश और साधना सरगम की आवाजों में। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत विजू शाह का है।

आइए अब सुनते हैं संग्राम। इस फिल्म का ये गीत कुमार सानू और पी सुनधा की आवाजों में। समीर ने इस गीत को लिखा और संगीत नदीम श्रवण का है।

ये हमने लिया है फिल्म बाप नंबरी बेटा दश नंबरी। इस फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में, गीत लिखा समीर ने और नदीम श्रवण का संगीत है।

फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन श्री चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुनते हैं सनम तेरी कसम। इस फिल्म का ये गीत कुमार सानू और पंकज उधास की आवाजों में

आइए अब सुनते हैं कभी हाँ कभी ना, इस फिल्म का ये गीत कुमार सानू की आवाज में।

आइए अब सुनते हैं रंग, इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। समीर ने इस गीत को लिखा और संगीत नदीम श्रवण का है।

आइए अब सुनते हैं बाजीगर इस फिल्म का ये गीत। आवाज दी है विनोद राठौर ने, रानी मलिक ने इस गीत को लिखा और संगीत अनु मलिक का है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब श्रोता सुने कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 12:05 पर श्रोता सुनेंगे एक ही शीर्षक से फिल्म संगीत सुगम संगीत।

का समय रहेगा दोपहर 12:30। 12:50 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें जानकारी का विषय रहेगा मूंग की उन्नत खेती। घर आंगन में बहनें सुनेंगी कार्यक्रम जिसका समय रहेगा 1:05। जानकारी के विषय रहेंगे बच्चों से जुड़ी समस्याएं और समाधान। कुछ बातें पुराने जमाने के जन्मदिन की। इसके अलावा बहनें किचन टिप्स विषय पर भी जानकारी सुन सकती हैं। दोपहर 2:00 समाचारों का प्रसारण होगा। 2:30 पर श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। 3:00 उर्दू सर्विस का प्रसारण। संध्या 5:00 युवाणी का प्रसारण किया जाएगा जिसमें युवा साथी रक्तदान महादान, नारी शिक्षा का महत्व, जल संरक्षण, इसके अलावा युवा देश का भविष्य तथा आज का इतिहास विषय पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरायकी का समय रहेगा संध्या 6:05। चौपाल का प्रसारण संध्या 7:00 किया जाएगा। इसमें लोक रीति रिवाज और परंपराएं, सड़क हादसों से कैसे बचें, इसके अलावा किसान भाई बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। 8:00 एक ही फिल्म से कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं। रात्रि 9:15 पर हेलो गौरबंद, इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुत करता रहेंगे श्रीपाल शर्मा और संयोजक नवीन सिसोदिया। रात्रि 10:00 गीत गंगा का प्रसारण किया जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। अब श्रोता सुने एक ही शीर्षक से फिल्म संगीत। आज का शीर्षक है प्यार। इस शीर्षक को हमें बनाकर भेजा है रामपुरा मटोरिया से मुरारी शर्मा और रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी ने। आइए सुनते हैं

आइए अब सुनते हैं नागिन। इस फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है महेंद्र कपूर ने, वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए सुनते हैं साथी इस फिल्म का ये गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। मजरू ने इस गीत को लिखा और संगीत नौशाद का है।

आइए सुनते हैं नील कमल। इस फिल्म का ये गीत आवाज दी है मोहम्मद रफ़ी ने। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा और संगीत रवि का है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक था प्यार। इस शीर्षक को हमें बनाकर भेजा था रामपुरा मटोरिया से मुरारी शर्मा और रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी ने। बारह बजकर 30 मिनट में हैं। अब श्रोता सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज सुनते हैं होला मली की गाई चंद गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलिहान, इसमें आज जानकारी का विषय है मूंग की उन्नत खेती।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, किसानी के अंदर जी की दाड़ा है वह हर किसान आपके खाण जोगी तो करे ही करे। विशेष तौर से जी को मूंग है वो अपने भारत देश के अंदर दो तरीके से बीजा जावे, एक जायद की फसल है एक खरीफ की फसल है। तो मुख्य फसल ना रखते हुए मूंग लगभग किसान भाई जी का है वह जायद में करे ही करे।

फसल चाहे कोई भी हो, सब शू प्रमुख जी की चीज है। बा है भी फसल को किस्म। तो किस्म जे आप मूंग की बात करा, जिका किसान भाई अब जायद में कर सी, बा वास्ते IPM 2-3 जी की किस्म है। इनको दाणो जी को है वो मध्यम आकार को हो सी, 100 दाणा को वजन लगभग 3.5 ग्राम होगा। अ किस्म जी की है बा दूसरी जी की अपनी किस्म है। बांगी अपेक्षा बात करा तो येलो मजोक वायरस जी के ना पा पित्त शीरा रोग को वहाँ बिंग प्रति ज़्यादा सहनशील पाई गई है और आ किस्म लगभग 70-72 दिन में पक के तैयार हो जाए। सही परिस्थितियाँ रहे और अपनो प्रबंधन सही हुए तो 11-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज आ पाएंगी लेस का। बिंग अलावा K851 है तो आ खरीफ और जाए दोनों ही मौसमों में बीजी जावे। आ किस्म जी की है 60-80 दिन में पक गए अपन तैयार मिल जाए। इन किस्म को दाणो जी को है वो मोटो हो सी, चमकदार भी होगा, जगह बाजार में भाविंग अपन चोख मिल जाए दूसरी किस्म है मुकाबले। एरा किस्म जी की है बा शुष्क खेती जगह बरानी क्षेत्र है अपनों बठे ज़्यादा बढ़िया उत्पादन देवे। MUM 2 है तो इंगो बुंटो जी को है बिंग ऊंचाई लगभग 75-80 सेंटीमीटर हुआ है। दाणो इंगो चमकदार हरियो मध्यम आकार वालो सी, 1000 दाणा को वजन लगभग 36 ग्राम इंगो बैठे है। और आ किस्म पीलो मजोक वायरस जगह की आप पहला बात करी बिंग प्रति मध्यम रूप से प्रतिरोधी है और इंगी उपज क्षमता लगभग 3.5-4 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से किसान भाई ले सके। गंगोत्री जगह ना पा गंगा 8 भी कहाँ आ भी दोनों ही मौसमों में बिजाई कर सका आप। और आ किस्म लगभग 72 दिन में पक के तैयार हो जाए। इंगे बुंटे की ऊंचाई लगभग 80-85 सेंटीमीटर हुआ है। 100 दाणा को औसत बार लगभग 3 ग्राम होगा और आ किस्म भी पीला मजोक वायरस जी की बीमारी है बिंगे प्रति मध्यम रूप से प्रतिरोधी है। और इंगे औसत उपज 3-3.5 क्विंटल प्रति बीघा किसान भाइयों ने मिल सके। SML 668 है आ भी दोनों मौसमों में बीज सके। कम अवधि यानी कम समय में पक के तैयार होने वाली किस्म आ 60-65 दिन में पक के तैयार हो जाए। 8-9 सेंटीमीटर लंबी और 10-11 दाना वाली फली जी की आएंगी। गुच्छा होएगा और झुकेड़ा उसी सागे पकाव बढ़िया आवाएंगे। इंगा दाना जी का है मोटा चमकदार होएगा। 100 दाना को औसत बार लगभग 6 ग्राम के आसपास आपने मिल जाए। आ किस्म जी की है 24% प्रोटीन ज़्यादा प्रति 100 ग्राम सूखे दाना में। 6 मिलीग्राम आयरन गो सशक्त स्रोत है यानी कि बहुत ही बढ़िया किस्म है यार। और पीला मजोक वायरस और सफ़ेद मक्खी के प्रति प्रतिरोधकता रख है। तणों जी को है वो मोटो और मजबूत हुआ है। इन कारण बुंटो जी को है वो पड़े को नहीं। जन्मोत्री जिकि ने गंगा 1 कमा पा आ भी बढ़िया किस्म है। 76-80 दिनांग में आप पक के तैयार हो जाए। इन बुंटे की ऊंचाई लगभग 65-85 सेंटीमीटर है। 100 दाणा को औसत बार लगभग 3 ग्राम के आसपास हुआ है। पीला मजोक वायरस के प्रति सहनशील है। सामान्य परिस्थितियां में औसत उपज लगभग 5.5-13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की लेस का। ज़्यादा खरीफ की फसल में ही बीजी जावे। इनके अलावा MH 421 है आम किस्म जी की है। मूंग के पीलो जी को विषाणु रोग है बिंगे प्रति सहनशील देखी गई है। दाणा को मध्यम मोटाई वालों सी, 100 दाणा को औसत बार लगभग 4.5 ग्राम होगा। 60-65 दिन में पक के तैयार हो जाए। इनमें फलियां फटने की समस्या कम आवे। सही प्रबंधन रखा, सही परिस्थितियां मिल जाए, हवा पानी बिल्कुल सही मिल जाए तो औसतन आप 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपजेंगी लेस का। मूंग वास्ते किसान भाइयों गहरी जल निकास वाली दोमट माटी वाली जिकी भूमि है बा उपयुक्त हो। बस भूमि जी की है बा क्षारिय ना हो। मूंग वास्ते वर्षा होने पर खेत की 1 या 2 बरियाँ जिया भी जुताई अपने आवश्यकता हो भी सब तैयार कर लिया। और जे पानी को अभाव हो तो पले वो कर दें। बत्तर आने पर खेत की जुताई करके पाटो लगा के खेत ने बुआई वास्ते आप तैयार कर सका। ज़्यादा इनमें समस्या आवे दिमक की तो बी वास्ते आप भूमि को उपचार करा। जिका बरानी क्षेत्र है बटे क्यूनाल फास 1.5% चूरण 6 किलोग्राम प्रति बीघा बुआई करने से पहला

0: खेत में मिला गेर भूमि ने उपचार अपा देश का। बीज को भी उपचार अपन कर देना चाहिए, बीज की मात्रा पर भी अपन ने विशेष तौर से ध्यान रखना है। मूंग वास्ते अपा 4-5 किलोग्राम स्वस्थ बीज प्रति बीघा पर्याप्त है। बुआई कतारा में करनी चाहिए और कतारों कतार की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर अपन रखा और बूंटे से बूंटे की दूरी अपन ने 10-15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए ताकि बूंटे ने हवा पानी जी की है वह सही मिलबो करे तो बूंटो जी को है बढ़वार बढ़िया ले सके। SML 668 जी की किस्म की आप बात करिए, बिंगी बीज की मात्रा लगभग 5-6 किलोग्राम बीज जी को है प्रति बीघे की दर्शों आप प्रयोग करा। कतारों कतार की दूरी खरीफ में आप 30 सेंटीमीटर और जायद में जी की आप बीजनी है बिंग में 22.5 सेंटीमीटर आप रखा। बुआई से पहला बीज ने थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित कर लिया। राइजोबियम और PSB कल्चर से भी आगा जी का पाउडर का पैकेट मिला बाजार में, वह 3 पैकेट आप प्रति हेक्टर क्षेत्र की जी की बीज की बुआई है बिंग में बी वास्ते आप बीजिंग में बीजन से पहला 1 घंटे आप उपचारित करके फिर आपने बीजनो चाहिए। दूसरी जी की दलहनी फसलें हैं बाणतरियाँ मूंग में राइजोबियम जीवाणु कल्चर से उपचारित करके बुआई करने से पैदावार में फायदा ही हुआ। मूंग में नाइट्रोजन आप 5 किलोग्राम फास्फोरस 10 किलोग्राम प्रति बीघे बुआई से पहला आप ड्रिल करके देश का भूमि ने और बुआई के बाद में जिप्सम लगभग 40 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से ड्रिल से ही आप देवा। मूंग में 2 या 3 सिंचाई की जरूरत हो और जे बिरखा ठीक रह जाए तो आप फसल में अपनी जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर सका। निराई गुड़ाई आपने समय के अनुसार रखनी है ताकि खरपतवार जी की है बा समय समय पर निकलती रहे। खरपतवार जे ज़्यादा होगी निराई गुड़ाई आप नहीं करी तो कठे न कठे बा अपनी उपज ने प्रभावित कर दे और मूंग माँ तो विशेष तौर से आप निराई गुड़ाई पर ध्यान देवा ताकि बूंटे की जी की बढ़वार है वह पूरी तरह मिल जाए बिंगी फलियाँ नाश ना हो और आपने पूरी पैदावार मिल सके। मूंग की फसल में खरपतवार वास्ते रासायनिक नियंत्रण भी आप ले सका बिंगमा कई तरीके की जिया दवाइयाँ हैं तो बंगो इस्तेमाल कर सका। रोग इंगमा कातरा है मोयला सफ़ेद मक्खी हरोतेलो आम वास्ते भी आप उपचार जी को है वो सावधानी शू करे रखा तो मूंग की फसल किसान भाई बढ़िया लेस कहेगा। इनके अलावा खेत के माँ अगर रोग आपने दिखाई देवे तो तुरंत उपचार अपन लेवा। भूमि को उपचार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अब हूँ चालू राम राम सा राम राम।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे खेत खलिहान कार्यक्रम। इसमें जानकारी का विषय था मूंग की उन्नत खेती। हम आकाशवाणी के कॉटन झिड़ी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम FM पर भी सुन सकते हैं। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा में आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के दौरे को लेकर प्रवासी भारतीय के साथ स्थानीय इटालियन कारोबारियों में उत्साह है। वे भारत में व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान राजस्थान को कोयले की निर्बाध आपूर्ति, तकनीक आधारित खनन और खनिजों के बेहतर दोहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कल राजसमंद जिले के राजपुरा दरीबा में हिन्दुस्तान जिंक संयंत्र का जायजा लिया। उन्होंने राजस्थान में प्रौद्योगिकी

0: आधारित भूमिगत खनन, एकीकृत धातु गलाने की प्रक्रियाओं और सामुदायिक विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिंक का परिचालन विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। 11 लाख टन से अधिक परिष्कृत उत्पादन क्षमता के साथ ये संयंत्र आत्मनिर्भर औद्योगिक इकोसिस्टम का उदाहरण पेश करता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। इधर राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108.94 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है, वहीं डीजल 94.17 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बढ़ी हुई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई। ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के निर्देश दिए। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने, रेबीज रोधी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रेबीज से संक्रमित या खतरनाक कुत्तों की इच्छा मृत्यु सहित कानूनी रूप से अनुमत उपाय करने के भी निर्देश दिए। जयपुर विकास प्राधिकरण ने पारदर्शिता की पहल को आगे बढ़ाते हुए भूमि आवंटन का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि साल 2014 से 2026 तक जमीन के बदले जमीन से संबंधित मामलों में आवंटित भूमि का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस जानकारी में संबंधित जोन, योजना का नाम, भूखंड संख्या और आकार सहित अन्य जरूरी ब्यौरा शामिल किया गया है, जिससे आम लोगों और संबंधित पक्ष को किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहे और आसानी से समुचित जानकारी मिल सके। ये पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम मानी जा रही है। प्रदेश में ईंधन बचत मुहिम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले की चिड़ावा नगर पालिका में अनुकरणीय पहल देखने को मिल रही है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सहित सभी कार्मिक साइकिल से दफ्तर पहुंचकर ईंधन बचत का संदेश दे रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स से होगा। ये मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स मुकाबले से बाहर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। अब बहनें सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

और साथ। आपने टाबरा ने मोबाइल से दूर करन वास्ते बने छोटी छोटी कहानियां सुनावनी चाहिए। बंगे संगे बैठर कोई लूडो होयो, सितोलियो होयो, कबड्डी हुई, खो खो होया, जिसा खेल खेलना चाहिए। उन्होंने बतावनो चाहिए कि आपने बकत माए आपा किया मिट्टी माए खेलता हा और दादी नानी सु किस्सा सुनता हा। जब टाबरा ने घर माए प्यार और साथ मिलसी नी तो वह आपी मोबाइल सु दूरी बना लेसी। और दूसरी मोटी समस्या है उनारो खानो पीनो। आजकल टाबरा ने आपा देखा बारहरी चटपटी चीज़ें घनी चोखी लागा है और बारहरी चीज़ें बे खाने री जिद भी करा है। इन वास्ते आपा ने रसोई मायने थोड़ी सी चतुराई दिखावनी पड़सी। सब्जी ने इं बनावनो है कि टाबरा ने स्वाद लागे। टाबरा ने बताओ कि बाजरी री रोटी, राबड़ी, दूध, दही, दाल, हरी सब्जियां माए कितनी ताकत होवे है। टाबरा ने संस्कार देवनो आज रे बकतरी सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने सिखाओ कि बड़ारो आदर किया करनो है, सगला सु राम राम किया करनी है, बेजुबान पखेरुआरी सेवा किया करनी है। बहनों आज रिया कड़कड़ाती धूप आपा ने आ सीख देवे है कि जिया आपा लू सु बचन वास्ते घर माए ठंडक कर बिया ही टाबरा ने भविष्य ने बचावन वास्ते घर माए ने संस्कारारी ठंडक करनी पड़सी। टाबरा ने लाड लडाओ, उन पर खिजन रे बजाय उन्होंने गोदी रे माए लेट पुचकारो। प्रेम सु तो पत्थर भी पिघल जावे है, टाबर तो आपनो खून है। टाबरा ने एक चोखो इंसान बनाओ जिको दुख सुख ने समझे। बनो जिया सूरज री तपन देखकर पक्षी छाव ढूंढे नी, बिया ही मुश्किल वक़्त रे मायने टाबर आपने माँ बाप माए छाया ढूंढे है। टाबरा रो भरोसो जीतो। तो बनो आ तो ही टाबरा री बात्या। कार्यक्रम ने आगे बनावा पर पहली सुना ओ चोखो सो गीत।

दया और प्रेम रा भाव जागसी। इया उनारो जुड़ाव प्रकृति सु भी होसी। गर्मी माए पानी ही कोनी, उना वास्ते दाना री व्यवस्था भी करनी घनी चोखी होवे है। बाजरो, जुआर और गेहूं रा दाना एक कोने रे मायने घाल दो। गर्मी माए हल्का दाना बाने पचावन मायने भी चोखा होवे है। एक बात रो और ध्यान रखो, परिंडो इसी जगह बांधो जट थोड़ी छाया रहे। पंछी तो अपने घर री रौनक होवे है। मैनो कदी चिड़कलिया घर रे माए घोंसलो बनावे तो कदी कबूतर गुटरगू करे। ए भी जीव है, आने भी आसरो चाहिए जाए। उन्होंने आसरो देवनो अपनो धर्म है। घर माए पखेरवारो आनो जानो शुभ मानो जावे। ईसु घर री अपनी नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जावे है और घर माए ने खुशियाँ आवे है। ऐ तो ही मारे मन री बात है जी कि थारे मन ने जरूर छुई होसी। आज ही कोई पुरानो मटको निकालो, उनने परिंडे रो रूप देर छत पर टांग दो। पक्षियारी चहचहट आपने मन ने कितनो सुकून देसी। तो आ तो ही पखेरुआरी सेवारी बात। अब बकत है यादारे झरोखे रे माए झांकण री। जेठापा चर्चा कराला पुराने बकत री। जद जन्मदिन खुशिया सु किया मनायो जाऊं तो, पन पहली सुनो ओ मीठो सो प्यारो सो संगीत, जिको थारे मन ने तारा ने झंझना देसी। जुड़ा रह जियो थारी सिल्लू जीजी रे सागे। गीत पछे आपा बाता कराला पुराने बखत रे जन्मदिन री।

मैडम गर्मी आ रही, छुट्टियां रो समय है, और टबरिया सगला घरे ही रहवे है, और घरे रहवे जद बांगी तो मांग ही आगे आगे बढ़ती जावे। कदी कह माने वो बना दो, कदी कह माने वो बना दो। और आपने जो का टाबरा छुट्टियां होगी तो वह भी आपने ननिहाल भी गेड़ा हो सी, तो बठे भी सारा री आई जिद रहवे। तो मैडम रसोई तो घर रो वो मंदिर है जठेसु परिवार री सेहत और सुकून जुड़ेड़ा हुआ है। रसोई मायने काम करता बकत छोटा छोटा नुस्खा ठा होवे तो काम घणो ही आसान हो जावे है। जेठ री ई गर्मी रे माए सब्जियां घणी जल्दी कुमला जावे है। अगर आपने धनिया और हरी मिर्च ताजी राखनी है नी, तो उनने कपड़ा रे माए ने लपेटर या डब्बी रे माए बंद कर राखो। इंगसू बंग माए ने नमी बन्योड़ी रहसी। और हाँ, जद आपा कदी सब्जी बनावा और लूण ज्यादा हो जावे नी, तो घबरावने री जरूरत कोनी। आटे री छोटी छोटी गोली बनार सब्जी मायने घाल दो, फालतू लून सोख लेसी और सब्जी स्वाद हो जासी। आ चतुराई तो आपा ने अपनी दादी नानी ही सिखाती ही। यही बनो आपा जद परांठा बना रही होवानी तो बिंग मायने थोड़ी सी कसूरी मेथी या अजवाइन घाल देवानी, तो बिंग सू खुशबू सू टाबर अपी आप खिंचा आवेला, और इतनी चोखा बे परांठा बनसी कि बे सारा चिट कर जासी। यही बनो अपन जेगर चावल खुला खुला खिलोड़ा बनावना है नी, तो उबल बन जाता अपन चावल ना उबालन लाग रहा। हाँ, तो बिंग माने नींबू री दो चार बूंदिया घाल देवनी चीज है, तो चावल मोती री जिया चमकन लाग जैसी। बहनों रसोई री सफाई भी बीती ही जरूरी है जितनो खानो। अगर रसोई रे सिंक सू बदबू आवे तो थोड़ो सिरको या नींबू रो रस घालर गर्म पानी सू धो दो, रसोई पाछी महकन लाग जासी। रसोई मायने काम करता बकत मसाला रो भी ध्यान रखनो चाहिए जाए। मसाला रे मायने एक दो लौंग घाल देवना चाहिए जाए। रसोई मायने बचोड़ा दाना और या फिर कोई रोटी ने कचरे रे मायने नहीं घालो, बाने चिड़िया रे वास्ते अलग रख दो, और छोटा टुकड़ा कर चिड़िया ने भी आपा घाल सका। हाँ, इंगसू रसोई मायने बरकत बनी रहसी और आपनो मन भी राजी रहसी। रसोई रे ई नुस्खा सो आपनो बखत भी बचे और खानो भी चोखो बना है। जिया एक चोखी रसोई सो घर में

बहनों की तो चोखो आपा भी ओ गीत सुने हो। बहनों विवाह एक भरोसो है, समर्पण है। समर्पण है भी लुगाई री, तारीफ है भी स्त्री री, जिको खुद रो घर छोड़ दियो। और धन्य है वह पुरुष जिका अनजान स्त्री ने आपरो घर सौंप दियो है। तो रिश्ते रे मायने प्रेम प्यार बनाए राखनो चीज है, हंसता मुस्कुराता रहनो चीज है। बहनों घर आंगन एक रेडियो प्रोग्राम को नहीं, आ तो एक कोशिश है अपने रिश्ता ने चोखा बनावन री। जिया गर्मी री दोपहरी मायने आपा घर री साल रे मायने सगला भेड़ा होर कूलर पंखा चलार बैठ जावा। बिया ही ओ कार्यक्रम आपा ने अपना रे साथ है बैठर मुस्कुरावन रो बहानो देवे है। जे मारी बात्या थारे मन ने छुई होवे तो मारो प्रयास सफल है। इ तपती गर्मी रे मायने अपनो और अपना रो पूरो ख्याल राखजो। मटके रो ठंडो पानी पीवजो, परिंडा ने भरजो और घर रे टाबरा ने मोबाइल सु दूर कर मीठी मीठी कहानी सुनाई जो। अब बखत हो गयो है विदा लेवन रो, पण घबराई जो मत, थारी सिल्लू जी जी पाछी आवेली नई विषया नई बात्या और प्यारे प्यारे गीतारे सागे। जब तक हंसता मुस्कुराता रहजो, जुड़े रहजो आकाशवाणी परिवार रे कार्यक्रम सागे। राम राम।

0: 43.8 degree Celsius and 43.5 degree Celsius was recorded at Palan station. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: In Uttar Pradesh, orange alert for heat wave to severe heat wave conditions has been issued again for the coming week. Banda continued as the hottest place in the country on the second consecutive day with a temperature of more than 47 degrees Celsius. Chief Minister Yogi Adityanath directed district magistrates, the health department, power department and relief agencies to remain on alert mode. More from our correspondent.
2: Apart from Banda, which recorded a staggering 47.6 degrees yesterday, several districts across the state are experiencing severe heat wave conditions, with maximum temperatures hovering near or crossing the 45 degree mark. The Indian Meteorological Department has issued a heat wave alert for 33 districts and advised people to remain cautious, especially during afternoon hours. Heat wave conditions will prevail in the southern and central parts of the state for the next 1 week, while whole state will have hot nights for the next 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: IMD has also forecast heat wave to severe heat wave conditions in Madhya Pradesh today. Heat wave conditions are likely to prevail over Bihar and Marathwada during the day and over Punjab, Haryana, Chandigarh for the next 5 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.2% up in afternoon trade today. The Sensex rose by 136 points to 75,451, while the Nifty added 42 points to 23,692 when reports last came in. At 7:30 p.m. last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend third India-Nordic summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टुन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
4: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा

0: जैव विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुँचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश

0: में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
4: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री

0: डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने फिल्म संगीत।

0: श्रोताओ, अभी आपने पूजा के फूल इस फिल्म का ये गीत सुना। आइए अब सुनते हैं जुल्म की पुकार इस फिल्म का ये गीत।
1: ये शहर में इकट्ठे टैक्सी में जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम छुप कर मिल रहे हैं?
2: उफो, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है कि हम साथ इकट्ठे कब रहेंगे। देखो, फिर फटी कमीज इसी करेंगे हमेशा।
1: वादा? तो फिर मैं भी एक वादा करता हूँ।
2: क्या?
1: फैक्ट्री से कपड़े हमेशा फाड़ कर लाया करूंगा।

आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है दो बदन, आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया है रवि ने।

आइए अब सुनते हैं नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, इस फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुनते हैं आशिक इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में।

आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है पतंग, आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अमर, इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया नौशाद ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम मीडियम वेव के साथ साथ FM पर भी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारी उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज़ होता है।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

और 2070 तक सेहत के लिए नुकसानदेह गैसों के अखराज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली के दो रोज़ा सरकारी दौरे पर आज शाम रोम पहुंचने वाले हैं। दौरे का मकसद तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजिकल जिद्दतराजी में दो तरफा इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब मोदी इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर वहां का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर रोम में मौजूद भारतीय बिरादरी में काफ़ी जोश खरोश पाया जाता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वियतनाम के सद तो लाम से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के भारत के अहद का अदा किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर दिफा ने कहा कि यह इश्तराक दोनों मुल्कों के दरमियान इजाफा शुदा जामे स्ट्रेटजिक साझेदारी का हम सुतून है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम बाहमी अतमाद, मुश्तरक अकदार और दिफा और सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम में करीबी इश्तराक के मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं। वज़ीर मौसूफ ने हनोई में वियतनाम के वज़ीर दिफा के साथ भी दो तरफा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई साझेदारी में इजाफे का जायजा लिया और बहरी सलामती, दिफाई सनत, तरबियत और इलाकाई इस्तेहकाम में मुश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया। इससे पहले जनाब सिंह ने वियतनाम के बाबाए कौम होशीमिन को उनके 136वें यौम पैदाइश पर उनकी यादगार पर खराज अकीदत पेश किया। अमेरिका इस साल 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के शहर अटलांटा में G20 वज़राए खारजा की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। वाशिंगटन इस साल होने वाले कई अहम आलमी सरबराह इजलास की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कल ऐलान किया कि इस इजलास में दुनिया की बड़ी मईशतों के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे ताकि आलमी इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के G20 के बुनियादी मकसद को आगे बढ़ाया जा सके। यह सरबराह इजलास अमेरिका के काम के 250 साल पूरे होने की तकरीबात के साथ मुनाकिद होगा। G20 में अमेरिका, भारत, चीन, रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, सऊदी अरब, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन समेत बड़ी मईशतें शामिल हैं। ये ग्रुप आलमी GDP के तकरीबन 85% और दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी की नुमाइंदगी करता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चीन के दो रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करेंगे। यह दौरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे के अख्ताम के एक हफ्ते के बाद हो रहा है। जनाब पुतिन आज शाम तक चीन पहुंच जाएंगे। उनके इस दौरे को करीबी नज़र से देखे जाने का इम्कान है, क्योंकि चीन रूस के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को कायम रखते हुए अमेरिका के साथ भी मुस्तहकम ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। क्रेमलिन ने कहा है कि जनाब पुतिन अपने चीनी हमसब के साथ अहम आलमी और इलाकाई उमूर समेत दोनों मुल्कों के दरमियान माशी तआवुन पर तबादले ख्याल करने का इरादा रखते हैं। यह दौरा चीन रूस दोस्ती माहदे के 25 साल पूरा होने के मौके पर हो रहा है, जिस पर 2001 में दस्तखत किए गए थे। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने हाई प्रोफाइल कानूनी मुकदमे में अरबपति कारोबारी एलन मस्क के खिलाफ फैसला सुनाया है। इस फैसले को ओपन AI और सैम ऑल्टमैन की बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। यह मुकदमा मस्नूई जहानत के मुस्तकबिल से मुतालिक सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई थी, जिस पर सभी की निगाहें थीं। ऑकलैंड की वफाकी अदालत के जजों ने मुत्तफ़िका तौर पर पाया कि एलन मस्क ने कानूनी मुकदमा दायर करने में काफ़ी ताखिर कर दी। जजों ने एलन मस्क के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि ओपन AI ने कॉरपोरेट मुनाफे के बजाय इंसानियत के फायदे के लिए मस्नूई जहानत को तैयार करने के अपने असल मिशन को तर्क कर दिया है। एलन मस्क ने दलील दी कि ओपन AI ने अपने उन गैर मुनाफा बख्श नज़रियात को तर्क कर दिया है जिसकी बिना पर यह कायम किया गया था, और इसके बजाय ओपन AI ने अपनी तवज्जो सरमायाकारों को फ़ायदा पहुंचाने पर मरकूज कर रखी है। एलन मस्क और ओपन AI के चीफ

0: एग्जीक्यूटिव सैम ऑल्टमैन के दरमियान इस मुकदमे ने उस बढ़ती कशीदगी को भी बेनकाब कर दिया है कि किसी मसनू जहानत को कंट्रोल करना चाहिए और टेक्नोलॉजी को किस रफ्तार के साथ बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी पहले की इन हदायत को वापस लेने से इनकार कर दिया है कि अवामी जगहों से उठाए गए आवारा कुत्तों को टीका लगाए जाने या उनकी नसबंदी किए जाने के बाद वापस न छोड़ा जाए। जस्टिस विक्रम नाथ की क्यादत में एक बेंच ने उन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया जिनमें नवंबर 2025 के हुक्म में तरमीम करने और हुकाम को यह हदायत देने के लिए कहा गया था कि वो इन कुत्तों को शेल्टर्स में महदूद कर दें। अदालत ने बच्चों, मुअम्मर अफराद और मुसाफरों पर कुत्तों के हमलों के वाकयात को गहरे तौर पर परेशान कुन बताया और कहा कि ये लानत हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों समेत अहम आवामी जगहों तक पहुंच गई है। बेंच ने खबरदार किया है कि जो अफसरान इन हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहेंगे उन्हें तौहीनी अदालत और तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज तकरीबन 90 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। एक हफ्ते से भी कम अरसे में ये दूसरी बार इजाफा किया गया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा और तजारत के शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और स्वीडन के उनके हम मनसब ने अखबार के एक मुश्तरक मजमून में आलमी गैर यकीनी की सूरत हाल के दौर में बेलकवामी शराकत दारी पर जोर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज से शुरू होने वाले चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं और सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई ने कैलिफोर्निया में एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में भी 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश दोस्ताना फिल्म का नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और शेर अर्ज है कि बुराक जुस्तुजू का मैं राकिब, बुराक जुस्तुजू का मैं राकिब, बुराक।

और ये भी शेर्स है कि है मेरे अज़्म की जिद आगही से, है मेरे अज़्म की जिद आगही से, है मेरे

मैं तन हाई महफिल चाहता हूँ। और ये शेर आखिरी समाज फरमाया इस गजल का कि कफन तन्हाई का पहनू कहाँ तक, कफन तन्हाई का पहनू कहाँ तक, कफन तन्हाई का पहनू कहाँ तक, कफन तन्हाई।

हूँ। और मक्ता समाज फरमाए इस गजल का कि बंदा है दिगर मक्तल में अफ

0: हूँ।
1: और एक नज्म, बल्कि नज्म व गीत ही मैं पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए, बिल्कुल ताज़ा है। दिल के कागज़ पे मैंने लिखा वो तेरा नाम है, दिल के का

दिल के कागज पे मैंने लिखा वो तेरा नाम है। और ये बंद देखेगा,

दिल के कागज पे मैंने लिखा वो तेरा नाम है। और वो परिंदों की जैसे दुआ सुबह दम, वादियों में भटकती सी खामोशियां, गीत के दिल में जैसे कोई

दी जिससे आरा हस्ती चमकने लगे, जिससे मेरे कलम को जुबा मिल गई, मेरे एहसास को जिसने बख्श

है। और आखिरी बंद समाज फरमाए, मेरी धड़कन के दर्पण है दस्तक तेरी, मेरी सांसों के फूलों में तेरी महक, सच ये है तेरे बिन मेरी हस्ती कहाँ, सच ये है तेरे बिन मेरी हस्ती कहाँ, है खुदा जो खुदा।

0: नाम है दिल के कागज पे मैंने लिखा वो तेरा नाम है।
1: कलामी शायर के तहत अपना कलाम पेश कर रहे थे जनाब अफजल मंगलौरी। उम्मीद करते हैं आपको ये कलाम जरूर पसंद आया होगा। और अब चलते हैं एक और सिंफ

के अम्मू के आसपास खड़े उनके तीनों बेटे, उनकी बीवियां, उनके बच्चे सब घबरा गए। अम्मू जिंदा हैं। हम समझे कि हमने उनके मरने का दुख कितनी आसानी से सह लिया। अम्मू सबकी तरफ बड़े दुख के साथ देख रही थी। उनके सबसे बड़े बेटे ने कितनी जल्दी सफेद कपड़ा डालकर अम्मू का मुंह छुपाना चाहा था। अगर अम्मू हाथ उठाकर चादर न हटा देती तो शायद वो सब दूसरे कमरे में जाकर उन्हें दफन करने की तैयारी शुरू कर देते। वो सब नजरें झुकाए खड़े थे, जैसे अम्मू ने देख लिया कि उनके मरने पर किसी की आंख से एक आंसू भी नहीं निकलेगा। 2 बरस हो गए जब डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर अम्मू के सारे बदन में फैल गया है, किसी भी वक्त उन्हें कुछ भी हो सकता है। जब से ये बात उनकी दोनों बहुओं ने सुनी थी, वो अम्मू का और ज्यादा ख्याल करने लगी थी। हर महीने फोन पर अम्मू की खैरियत पूछती। दूसरी बहू अमेरिकन थी, वो इंडिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, फिर भी वो हर साल आती, किसी 5-स्टार होटल में ठहरती, हैदराबाद की सैर तफरी से फुर्सत मिल जाती तो किसी दिन अम्मू की मिजाज पुरसी के लिए भी आ जाती। तीनों बेटे उनके इलाज के लिए बड़ी पाबंदी के साथ डॉलर और रियाल भेजते थे। अम्मू के लिए बहुत अच्छा डॉक्टर, बेहतरीन इलाज, घर में हर तरह का आराम, दिन रात खिदमत करने वाली ख्वाजा भी, जिसे दूर बैठी बहुएं इनाम और इकराम से नवाजती रहती थी। शिकागो में एक दिन सुबह सवेरे ख्वाजा बी का फोन आया। बेगम साहब की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर साहब बोले उनके बेटों को फोन कर दो, सबको जल्दी आ जाओ बोलो। इस फोन से सारे घर में हलचल मच गई, सबके प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गए। उफ़ो, अम्मू हमेशा इसी तरह परेशान करती हैं, भला ये कोई मौसम है इंडिया जाने का? गर्मी के मारे सब मर जाएंगे हम। उनकी बहू नसीम घबरा गई। हेलो हेलो, चारों तरफ से फोन आने लगे। न्यूयॉर्क से जमशेद कह रहा था, भाईजान ख्वाजा बी का फोन आया है कि 24 घंटे, लेकिन मुझे इस वक्त लीव लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन जमशेद, तुम्हें याद है कि हम सब ने अम्मू से वादा किया था कि हम चारों भाई मिलकर उनकी डेड बॉडी उठाएंगे, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा, रशीद ने उसे समझाया। फिर दुबई से तीसरे भाई खुर्शीद का फोन आया। भाईजान, हम सब मिलकर अमेरिका तफरी करने जा रहे थे, अभी निशी को भी साथ ले जाऊं, इंडिया में तो गर्मी बहुत होगी, आप वहां किसी 5-स्टार होटल में हमारे लिए रिजर्वेशन तो करवा दीजिए। हाँ भाई, मेरे लिए भी इस मौसम में इंडिया जाना बहुत मुश्किल है। अम्मू अच्छी भली होंगी, जरा दिल घबराया तो ख्वाजा भी से फोन करवा दिया। खुर्शीद, अभी मैंने डॉक्टर आरिफ से बात की, वो कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। तो फिर मैं आ जाऊंगा, दिल्ली के एक सेमिनार का इनविटेशन भी आया है। अरे फिर तो हम एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे ना डेड, पिंकी ने खुश होकर कहा। हाँ बेबी, हम चारों ने अपनी अम्मू से प्रॉमिस किया है कि हम उनकी डेड बॉडी आफ्टर डेथ, क्या ग्रैंड मम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं किया डैड? उलझी सांसों के दर्द को दिल में थामे यही बात अम्मू भी सोच रही थी। सुनसान घर, खाली कमरे, सूना आंगन, अंधेरे कमरे में वो अकेली लेटी दर्द से तड़प रही थी। किसी दवा का अब कोई असर नहीं होता, बदन का कोई हिस्सा काबू में न था। कांपते हाथ से पानी की बोतल उठाने की कोशिश करती तो सारा बिस्तर भीग जाता। पानी पानी, ख्वाजा भी कहाँ मर गई? किसका फोन आया है? किसका खत आया? दरवाजे पर कौन आया है? ख्वाजा भी कमरा बंद किए अपने मियाँ के साथ सोती रहती थी। बुढ़ी को चिल्लाने की आदत हो गई है, मैं तो पागल हो जाऊंगी यहाँ, आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढो जी। अम्मू के मियाँ की वकालत बस यूं ही चलती थी, मगर अम्मू ने जायदाद बेचकर चारों बेटों को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया। अच्छी डिग्रियां मिलते ही उन सब के पंख निकल आए और उन्होंने अमेरिका की तरफ प्रवास की। अम्मू को ये बात अच्छी न लगी, इतनी दूर, अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े हम सब।

अमेरिका में जा बसेंगे अब हम सब, तुम्हें कौन ले जाएगा अमेरिका? बच्चों के अब्बा ने हंसकर कहा, अमेरिका में माँ बाप नहीं रहते हैं, वो नौजवानों का मुल्क है। अच्छा, तो माँ बाप कहाँ जाएं? अम्मू ने बड़े ताज्जुब से पूछा था। कूड़े की टोकरी में, अब्बा ने खफा होकर कहा था। वीरान घर के आंगन में बैठी कबूतरों को दाना डालते में अम्मू सोचती थी कि कूड़े का ढेर ही बन गया है ये घर। बार बार लाइट चली जाती है, अंधेरे में माचिस नहीं मिलती। पोस्टमैन कोई खत फेंक जाए तो वह किसी क्यारी के पीछे पड़ा महीनों के बाद मिलता है। वैसे भी उनके बेटे अब खत लिखने की पुरानी रस्म भूल चुके थे, कभी जरूरत होती तो फोन कर लेते। दूध वाला दूध फाटक पर रखकर चला जाता है तो रोज कुत्ता उठाकर ले जाता है। किसी आंगन में बच्चे की गेंद गिर जाए तो अंदर आने से पहले अम्मू की सूरत देखकर भाग जाता है। किसी रिश्तेदार को फुर्सत नहीं मिलती कि वो अम्मू के पास आके बैठे। कितनी बार वो फोन पर कहती थी, रशीद अब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझे रोज बुखार आ जाता है, खांसी बहुत बढ़ गई है, अकेले घर में मेरा बहुत जी घबराता है। मगर अम्मू आपकी बीमारी का इलाज यहाँ बहुत महंगा है, फिर घर में कोई नहीं रहता, आपकी देखभाल कैसे होगी? रशीद अम्मू को अपनी मजबूरी सुनाता था। अच्छा, तो फिर हनी और तारिक से कहो मुझसे फोन पर बात कर लें, बच्चों को देखने को मेरा बहुत जी चाहता है। बच्चों को याद करके उन्हें रोना आ जाता था। वो बात यह है अम्मू कि बच्चों को उर्दू नहीं आती, इसलिए वो आपकी बात नहीं समझ सकते। अम्मू फोन रख देती थी, मेरी बात कोई भी नहीं समझता, ना बच्चे ना उनके माँ बाप। जब तीनों भाई अमेरिका चले गए तो अम्मू अब्बा के पास हमीद को छोड़ गए थे। हमीद का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था, सारा दिन निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता, कभी स्टूडेंट यूनियन का झंडा हाथ में थामे सड़कों पर घूम रहा है तो कभी किसी सियासी पार्टी के साथ नारे लगा रहा है। फिर एक दिन सुना वो किसी पार्टी में शामिल हो गया है। तुम्हारे इम्तहान में एक महीना रह गया है, स्टडी क्यों नहीं करते? अब्बा उसे बार बार याद दिलाते थे। अब्बा मैं इस साल इम्तहान नहीं दूंगा, मुझे इलेक्शन का काम करना है। अब्बा बहुत खफा हुए। अम्मू ने रो रो कर समझाया, मुस्तकबिल के भयानक नक्शे खींचे, जब जिंदगी भर भाइयों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। मगर हमीद अब घर बहुत कम आता था। फिर खबर आई कि किसी मुखालिफ पार्टी के मेंबर को मारने के जुर्म में हमीद गिरफ्तार हो गया है। फिर सुना वह आदमी हॉस्पिटल में मर गया। सारे मोहल्ले के लोग अम्मू और अब्बा को पुरसा देने आए। जाने कौन से गुनाह की सजा मिली कि हमीद इस घर में पैदा हुआ, अब उसे फांसी हो जाएगी। दोस्त रिश्तेदार ताजियत के लिए आने लगे, फांसी पर चढ़ेंगे हमीद के दुश्मन, अब तो वो हमारा हीरो है, हमीद के दोस्त कह रहे थे। उनकी पार्टी अक्सरियत में आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों तक इस मुकदमे की कार्रवाई चलती रही, फिर मामला ठप हो गया। एक दिन हमीद का एक दोस्त आया तो उसने अम्मू से कहा, कोई पार्टी वर्कर दो चार मर्डर कर डाले तो फिर हमारी पार्टी उस इलेक्शन का टिकट देने पर मजबूर हो जाती है। वही हुआ, हमीद के गुनाहों की लंबी लिस्ट ने उसे अपनी पार्टी का सबसे अच्छा लीडर बना दिया। अब देखता हूं कि हमारे हलके का कौन वोटर है जो मुझे वोट दिए बगैर जिंदा रह सकता है। अम्मू और अब्बा दम साधे बैठे थे जब गले में फूलों के हार डाले एक जुलूस के साथ हमीद घर आया। अब्बा दोनों हाथों में मुंह छुपाए बैठे थे। वो अब्बा से गले मिलने के लिए झुका तो अब्बा नीचे गिर पड़े। फिर हमीद मिनिस्टर बन गया और जिद की कि अम्मू मेरे साथ दिल्ली चलिए, सरकारी बंगले में रहिए, गवर्नमेंट की कार में घूमिए, खूब ठाट करिए। अम्मू ने मिनिस्टर की अम्मी बनने के लिए कई जोड़े सिलवाए, नई चप्पल खरीदी, मगर वो मिनिस्टर के बंगले में फिट ना हो सकी। नौकरों से गोश्त तरकारी का हिसाब मांगती, चौकीदार और ड्राइवर के सलामों के जवाब में जीते रहो सलामत रहो कहकर खुश होती, बंगले के लान में धूप के रुख खाट डालकर पापड़ सुखाने बैठ जाती। चुनाचे मिनिस्टर की बेगम ने उन्हें फिर वहीं पहुंचा दिया जहां वो सर झुकाए अचार मुरब्बे बनाने में जुटी रहती थी। 3 दिन हो गए, सब अम्मू के आस पास हाथ बांधे खड़े थे, बार बार ऑक्सीजन का ट्यूब ठीक करते। अम्मू को कुछ होने वाला है।

0: इस आने वाले दुख को वो अपने चेहरों पर पेंट कर चुके थे। अम्मू बड़ी मुश्किल से आंख खोलकर सबको देखती, हमीद नहीं आया, मेरा हमीद कहाँ है? शायद अम्मू का दम हमीद में अटका हुआ है। ख्वाजा भी कह रही थी कि हमीद दिल्ली में है, इस बार इसकी पार्टी को इलेक्शन में अक्सरियत नहीं मिली, अब हमीद मिनिस्टर नहीं रहेगा, ऐसे वक्त वो दिल्ली से बाहर कैसे जा सकता है। मगर हम सब ने अम्मू से वादा किया था कि उनके आखिरी वक्त, रशीद बहुत गुस्से में था, अम्मू बार बार आंखें खुलती, तुम सबको अपने पास इतने दिनों के बाद देखकर मेरा जी चाह रहा है कि बच्चों को अपने हाथ से बनाकर पुलाव खिलाऊं। इस वक्त भी अम्मू का दिल पुलाव में अटका है, अल्लाह तौबा। उनकी बड़ी बहू ने गालों को छूकर अम्मू से कहा, अम्मू इस वक्त यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए आप। मेरा हमीद, अब मेरे जनाजे को कंधा देने। वो फिर रोने लगी, तुम सब ने मुझसे वादा किया था कि मेरे जनाजे को तुम चारों भाई मिलकर उठाओगे। हेलो हेलो, अब अम्मू का क्या हाल है? हमीद का दिल्ली से फोन आ गया, क्या ऑक्सीजन दी जा रही है? मगर अब ऑक्सीजन देने से क्या फायदा जब डॉक्टर कह चुका है। भाई जान मेरी बात सुनिए, अगर खुदा ना खास्ता अम्मू को आज रात में कुछ हो गया तो मिनिस्टर भी मुझे पुरसा देने आएंगे, लेकिन परसों हमारी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी, इसलिए आप अम्मू को फौरन किसी अच्छे शानदार हॉस्पिटल में ले जाइए। इंतकाल की न्यूज़ टीवी पर आए तो उस हॉस्पिटल का नाम भी होना चाहिए। फिर उसने कहा, जरा भाभी को फोन दीजिए। हेलो भाभी, सब इंतजाम बहुत अच्छा कीजिए, खर्च की फिक्र मत करना, मुमकिन है टीवी वाले भी अपनी न्यूज़ में शामिल करने के लिए घर पर आ जाएं। आप फिक्र न करें हमीद भाई, मैंने सब इंतजाम बहुत अच्छा कर दिया है, भाभी ने इत्मीनान दिलाया। क्या कह रहा है हमीद, कब आ रहा है वो? अम्मू ने डूबती सांसों को रोककर पूछा। तब ड्राइंग रूम में जाकर खुर्शीद ने आहिस्ता से कहा, कल मुझे तो दिल्ली में एक सेमिनार अटेंड करना है और मैं सिर्फ 3 दिन की लीव लेकर आया था। बच्चे गर्मी से घबराए जा रहे हैं, अमेरिकन बहू ने मुंह बनाकर कहा। सुबह सवेरे अम्मू की आंख खुलने से पहले वो सब चुपके चुपके गेट के बाहर निकले। उन्होंने ख्वाजा बी को अम्मू की अच्छी तरह देखभाल करने की हिदायत दी और बहुत से डॉलर रुपए उसके हाथों में थमा दिए। अम्मू की खैरियत के लिए हमें फ़ोन करती रहना, उनका ख्याल रखना, बाय बाय। ख्वाजा बी अंदर आई और ये देखकर डर गई कि अम्मू की आंखें तो खुली हुई थी, शायद उन्होंने अपने बेटों को जाते हुए देख लिया था। फिर उसने एक दुकान का फ़ोन नंबर मिलाया। हेलो, मैयत ले जाने वाली एक लारी भेज दीजिए और साथ में 4 आदमी भी हों जनाजे को कंधा देने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए, उनके लड़के हर चीज़ का इंतजाम कर गए हैं।
1: बहुत ही उम्दा अफसाना था दोस्तों, हमें तो बहुत पसंद आया और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये जरूर पसंद आया होगा। और अब एक गजल आपको सुनवाते हैं जिसे अपनी आवाज दी है जगजीत सिंह ने, तो समाप्त फरमाइए ये गजल।

0: और दोस्तों अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। उसके लिए हमारा ईमेल का पता आप नोट कर लीजिए, प्रोग्राम कलाम शायर और अफसाना, प्रोग्राम इंचार्ज उर्दू सर्विस ESD@gmail.com। और अब अपने दोस्त नईम को दीजिए इजाजत, आइंदा किसी प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बचपन फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और सामने लीजिए, आप सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर के लिखाई गई, जिसे मौसीकी सजाया नदीम शर्मन ने। फिल्म है दिल तेरा आशिक।

कर्ज फिल्म का नवाब सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार थे आनंद बख्शी और मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामने लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में नदीम शर्वन की मौसीकी सजाए नगमा फिल्म है राजा।

डर फिल्म का नाम आप सुन रहे थे, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। नगमा निगार थे आनंद अख्तर, मौसीकार शिव हरी। और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अपना पन फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कौम हो ची मिन को उनके 136वें योम पैदाइश पर उनकी यादगार पर खराज अकीदत पेश किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज तकरीबन 90 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। एक हफ्ते से भी कम अरसे में यह दूसरी बार इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये हो गई है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये फी लीटर। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109.70 रुपये और डीजल की कीमत 96.07 रुपये। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की कीमत 96.11 रुपये फी लीटर हो गई है। भारतीय रेलवेज ने चेन्नई के नवाही रेल नेटवर्क को उसत देने के लिए अर्क कोनम चेंगल पट्टू लाइन को दोहरा करने के प्रोजेक्ट के लिए 993 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। रेलवेज की वजारत ने कहा है कि 68 किलोमीटर तवील रेल लाइन अहम चेन्नई नवाही सर्कुलर रेल नेटवर्क का हिस्सा है जो चेन्नई के साहिल को ताम्बरम चेंगल पट्टू और अर्ककोनम से मिलाता है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट भीड़भाड़ वाले चेन्नई नवाही रेल नेटवर्क पर भीड़भाड़ को कम करने में अहम रोल अदा करेगा जबकि इसकी वजह से रेलगाड़ियों के वक्त पर आने जाने और कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी पहले की इन हिदायत को वापस लेने से इनकार कर दिया है कि अवामी जगहों से उठाए गए आवारा कुत्तों को टीका लगाए जाने या उनकी नसबंदी किए जाने के बाद वापस न छोड़ा जाए। जस्टिस विक्रमनाथ की क्यादत में एक बेंच ने उन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया जिनमें नवंबर 2025 के हुक्म में तरमीम करने और हुक्काम को यह हिदायत देने के लिए कहा गया था कि वो इन कुत्तों को शेल्टर्स में महदूद कर दें। अदालत ने बच्चों मोहम्मद अफराद और मुसाफिरों पर कुत्तों के हमलों के वाकयात को गहरे तौर पर परेशान कुन बताया और कहा कि ये लानत हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों समेत अहम अवामी जगहों तक पहुंच गई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चीन के दो रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करेंगे। ये दौरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के अख्ताम के एक हफ्ते के बाद हो रहा है। जनाब पुतिन आज शाम तक चीन पहुंच जाएंगे। उनके इस दौरे को करीबी नजर से देखे जाने का इम्कान है क्योंकि चीन रूस के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को कायम रखते हुए अमेरिका के साथ भी मुस्तहकम ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। क्रेमलिन ने कहा है कि जनाब पुतिन अपने चीनी हमनसब के साथ अहम आलमी और इलाकाई उमूर समेत दोनों मुल्कों के दरमियान माशी तआवुन पर तबादला ख्याल करने का इरादा रखते हैं। यह दौरा चीन रूस दोस्ती मुआहदे के 25 साल पूरा होने के मौके पर हो रहा है जिस पर 2001 में दस्तखत किए गए थे। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने हाई प्रोफाइल कानूनी मुकदमे में अरबपति कारोबारी एलोन मस्क के खिलाफ फैसला सुनाया है। इस फैसले को ओपनएआई और सैम ऑल्टमैन की बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। यह मुकदमा मसनू जहानत के मुस्तकबिल से मुतालिक सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई थी जिस पर सभी की निगाह थी। ऑकलैंड की विफाकी अदालत के जजों ने मुत्तफिका तौर पर पाया कि एलोन मस्क ने कानूनी मुकदमा दायर करने में काफी ताखीर कर दी। जजों ने एलोन मस्क के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि ओपनएआई ने कॉरपोरेट मुनाफा के बजाय इंसानियत के फायदे के लिए मसनू जहानत को डेवलप करने के अपने असल मिशन को तर्क कर दिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी काबिल तजदीद तवानाई दिफा और तजारत के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्वीडन के उनके हमनसब ओल्फ क्रिस्टर्सन ने अखबार के एक मुश्तरका मजमून में आलमी गैर यकीनी सूरतहाल के दौर में बैनुल-अक़वामी शराकत दारी पर जोर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज से शुरू होने वाले चीन के दो रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही ये खबरें खत्म हुई।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं या हमारी आज की दूसरी मजलिस की निशियात अब इख्तिताम पजीर होती है।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.72 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 5 बजे हैं। श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में कुछ गाने सदाबहार आप सुनेंगे, चर्चाएं होगी। इसके अलावा आज का दिन पुण्यतिथि का दिन, हिंदी साहित्य के पुरोधा व्यक्तित्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये तमाम बातें आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करेंगे। लेकिन पहले एक गाना सुनें।

अभी आपने कैफ़ी यास्मी का गाना सुना, मूसीकार मदन मोहन थे, आवाज़ किशोर कुमार थी और फिल्म का नाम परवाना। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ और आज के दिन आपका देहांत हुआ। हिंदी साहित्य के वे पुरोधा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने से पूर्व के लोगों की धारणाओं को तर्कों के सहित पलटा, उनमें आचार्य जी का बड़ा नाम। यूं आपके निबंध अपने आप में हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। आपका जन्म सावन की एकादशी को हुआ, 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा ओजवलिया गांव में। पिता श्री अनमोल द्विवेदी और माँ श्रीमती ज्योतिषमती। परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था और पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। आरंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। 1920 में मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा अपने उत्तीर्ण की। बाद में गांव के निकट ही पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अपने अध्ययन किया। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। वहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षितिमोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का अपने गहन अध्ययन किया और अपना स्वतंत्र लेखन भी व्यवस्थित रूप से आपने यहीं पर आरंभ किया। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से आपको सम्मानित किया गया। इसके अलावा साहित्य में निबंधकार और आलोचक और साथ ही उपन्यासकार के रूप में आपकी जो उपस्थिति थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, किसी भी बड़े लेखक का लिखे संपूर्ण साहित्य में उनके द्वारा लिखी गई

प्रत्येक पंक्ति अपने आप में एक पूर्ण निबंध का रूप होती है। उसी तरह की कुछ पंक्तियों पर अपने चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उससे पहले एक गीत और सुनें।

दोस्तों, अभी आपने साहिर का लिखा गाना सुना, धुन खय्याम ने बनाई, आवाज़ें मुकेश और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम कभी कभी। बात अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके साहित्य की कर रहे हैं। एक निबंध में वे लिखते हैं कि जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कितनी बड़ी बात वे लिखते हैं। ऐसे ही एक जगह वे लिखते हैं कि अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता, तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वो मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। इनके साहित्य की इन पंक्तियों को भी अगर अपने पढ़ें, इन्हें समझें और कहीं एकाध भाव को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा यो समझे उसी दिन से मनुष्य जीवन आरंभ होता है। वे लिखते हैं कि दीनता उस मानसिक दुर्बलता को कहते हैं जो मनुष्य को दूसरे की दया पर जीने का प्रलोभन देती है। एक स्थान पे वे लिखते हैं कि सत्य वो नहीं है जो मुख से बोलते हैं, सत्य वो है जो मनुष्य के आंतरिक कल्याण के लिए किया जाता है। उत्तम साहित्य की सृष्टि करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, संपूर्ण समाज को इस प्रकार सचेतन बना देना परमावश्यक है जो उस उत्तम रचना को अपने जीवन में उतार सके। गाना सुनेंगे।

अभी आपने सरस्वती चंद्र का फिल्म, सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में बात अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी की कर रहे हैं। आपके विभिन्न ललित निबंध लिखे हैं, जिनमें से एक दो पर अपने बात करें, उनमें से कुछ पढ़ें आपके लिए। एक उनका निबंध है, क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध में वे लिखते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। मित्रों, ये निबंध यूं माने कि आज से लगभग लगभग 70-80 वर्ष पहले लिखा गया, लेकिन आज भी ये निबंध इतना सार्थक है, इतना सामयिक है। प्रत्येक वो व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है, अक्सर दोष उसी में ढूंढे जाते हैं। जो कुछ नहीं करता वो आराम से है, वो भला आदमी है बेचारा। यही बात है, गाना सुने एक अच्छा सा।

उतर रहे हैं। आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ से प्रेम ने मनुष्य को दबोच लिया है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर का आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उसके रोने गाने तक पर उद्देश्य का आरोप किया जाता है, उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है, उसके प्रत्येक त्याग और बलिदान के कार्य में भी चाल का संधान पाया जाता है और अपने अपने दलों में ऐसा करने वाला सफल नेता भी मान लिया जाता है। परंतु द्विवेदी जी लिखते हैं इस निबंध में, जिसका नाम है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, वो कहते हैं, मेरा विश्वास है कि ऐसा करने वाला आदमी सबसे पहले अपना ही अहित करता है। बड़े बड़े राष्ट्रनायक जब अपनी विराट अनुचर वाहिनी के साथ इस प्रकार का गंदा प्रचार करते हैं तो ऊपर ऊपर से चाहे कितनी भी सफलता उनके पक्ष में आती हुई क्यों न दिखाई दे, इतिहास विधाता का निष्ठुर नियम प्रवाह भीतर ही भीतर उनके स्वार्थों का उन्मूलन करता रहता है। ये देखिए आज के समय का कितना बड़ा सत्य, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। एक गजल सुने जगजीत सिंह की आवाज़ में।

अभी आपने जावेद अख्तर का लिखा ये कलाम सुना। कुलदीप सिंह ने मौसीकी दी, जगजीत सिंह ने आवाज़ दी, फिल्म थी साथ साथ। आखिरी प्रोग्राम बात अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी की यही कि जो वास्तव है उसे दबाना, जो अवास्तव है उसका आचरण करना, यही तो अभिनय है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युपाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और इनका प्रसारण समय सुनिए। पहले सुनिए आज के दिन के शेष कार्यक्रमों के बारे में। संध्या 7 बजे एक ग्रामीण परिवार अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी लोक रीति रिवाज व परंपराएं, सड़क हादसों को कैसे रोका जाए। इसके अलावा बाजार भाव, मौसम की जानकारी दी जाएगी। गीतों भजन सुनवाए जाएंगे। कुछ भक्ति रचनाएं फिल्मों से आपके लिए 7:45 पर प्रसारित की जाएगी। एक ही फिल्म से प्रोग्राम होगा रात 8 बजे। श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स पर उनके मनचाही राजस्थानी लोकगीतों लोक भजनों का कार्यक्रम हेलो गुरबंद आज रात 9:15 पर होगा। प्रस्तुति श्रीपाल शर्मा की और संयोजक नवीन सिसोदिया। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा आपके लिए आज रात 10 बजे पेश किया जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। लीजिए अब सुनिए कल के दिन प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। कल सुबह 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, तत्पश्चात 6:45 पर चिंतन, सुप्रभात कार्यक्रम में 7:30 पर चर्चा होगी, गर्मी से कैसे बचें, रिश्तों का सम्मान और उस्ताद की योजना। इसके अलावा प्रातकाल बजने वाले कुछ प्यारे गाने आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे। कुछ फिल्मी दो गाने आप सुनेंगे दिन में 9:30 पर। खेत खलिहान में किसान भाइयों के लिए चर्चा होगी, ग्वार की उन्नत खेती कैसे करें। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगे दिन में 1:05 पर, इसमें चर्चा होगी प्रसन्नता अपनों से बात करने में, मुहावरा लकीर का फकीर होना, सैर करें ऊटी हिल स्टेशन की, मौसमी फल आड़ू। इसके अलावा मनीला सचदेवा की एक वार्ता आप सुनेंगे, आधुनिक समय में शिक्षा। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम में कल संध्या 5:00 आपकी पसंद के गाने सुनवाए जाएंगे। इसके अलावा एक वार्ता आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत, वार्ताकार हैं अंतरिक्ष शर्मा। चौपाल कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्रों के उत्तर दिए जाएंगे, ये कार्यक्रम ईमेल और उनके खतों पर आधारित है। हेलो मन भावन, ये कार्यक्रम होगा कल रात 10:00, पेश करेंगे विकास पारीक, संयोजन नवीन सिसोदिया का है। हम अपने सुनने वालों को बता दें इस कार्यक्रम में आप कल दिन में 11:00 से 11:30 तक हमें अपनी पसंद के कॉल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हमारे नंबर हैं 220992 और 220993। सूरतगढ़ का एसटीडी कोड नंबर 01509। और ध्यान रहे कि आपने अगर इससे पहले यानी 1 महीने के दौरान अगर इस कार्यक्रम के लिए या किसी भी फरमाइशी कार्यक्रम के लिए कॉल किया है तो आप कृपया कॉल न करें, आपका 1 महीने बाद कॉल होगा। ऐसे श्रोता जिन्होंने

मैंने तो कॉल नहीं किया है, उनका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 01509-220992 और 220993। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर बोल रहे हैं।

हई शमशाद बेगम दा गाया गीत। फिल्म हई गुड्डी। सुनन आलियो, बहुडिया तू गर्मी केडी पेंदी पई है। इस मौसम विच सेहत दी देखभाल बहु जरूरी है। इंदे वास्ते तुसा डी विच 2-3 लीटर पानी पीवना है। नाली नींबू पानी, नारियल पानी, शरबत, लस्सी, सत्तू घिन्नो। ए चीजा शरीर को ठंड पौंदियां हैं ते शरीर विच पानी दा घाटा नहीं होवन देंदियां। इस मौसम विच घ्यू तेल आलियां चीजा को ना खावन दी सलाह दित्ती वेंदी है। खाने विच दाल, रोटी, हरी सब्जी, दही घिन्नो ते घर विच सारा को ताजा खाना खावन को दियो। सूती कपड़े पावन कीते रखो। दोपहरी घरों धूप विच बाहर निकलन वेले सिर को ढको ते धूप दा चश्मा लावना ना भूलो। ई करके इंज दियां छोटियां छोटियां गालां को ध्यान विच रखो ते गर्मी को दूर भजाओ। ते हुण मैं तुहाको सुनवेंदी हां गीत छुहे राधा है। तैनू बेरियां दे झुंड चो बुलावा, निचोरी चोरी आजा गोरिये, ते अगू छुहेर के आधी है। दस केड़े में बहाने आवा के बेरियां दे बेर मुक गए। गावन वाले कलाकार हैं आशा सिंह मस्ताना ते मदन बाला सिंधु।

0: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक और राज्यस्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद राज्य के सभी टर्मिनल डिपो और रिटेल आउटलेट पर पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति भी पूरी तरह से सामान्य है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों प्रमुख तेल कंपनियां मिलकर वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रख रही हैं। उन्होंने आमजन से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने, घबराकर अनावश्यक खरीदारी नहीं करने और ईंधन की उपलब्धता के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आज झुंझुनू प्रवास के दौरान लोगों से ईंधन बचाने की अपील की।
1: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रीतें होती हैं और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र हित में है, तो आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने कितने कपड़े काफिले में कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था लेकिन मैंने भी काफिले में मना किया, हमारी ज्यादा गाड़ियां साथ नहीं गई, तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में है और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है। लेकिन फिर भी
0: विभाग की ओर से औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान एक पेट्रोल पंप पर 5 लीटर की आपूर्ति पर 30 मिलीमीटर पेट्रोल कम देना पाया गया, जिसके बाद संबंधित पंप के नोजल सीज कर दिए गए। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं और 4,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई के तौर पर सैन्य सटीकता, सूचना नियंत्रण और कूटनीतिक संदेश तथा आर्थिक संकल्प को एक साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने गहराई तक वार करते हुए आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया, एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को तोड़ दिया। सेना प्रमुख ने ये बात नई दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत को शांति सुनिश्चित करने, विकास की गति को तेज करने और वैश्विक माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी राष्ट्रीय शक्ति का इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों की पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। इन बसों के सुचारू संचालन के लिए राज्य में 9 अत्याधुनिक ई बस डिपो बनाए जा रहे हैं। आज जयपुर में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई परिवहन सेवाओं और बसों की खरीद प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए ई बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और आमजन को सुगम परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में भी विस्तार करने का फैसला किया गया। बेड़े में अगस्त

0: माह तक 144 ब्लू लाइन बसें और 30 एसी स्लीपर बसें शामिल की जाएंगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने आज पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल सुविधा, प्रतीक्षालय और पार्किंग सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। डीआरएम ने अधिकारियों को सुरक्षा मानकों और रेल संरक्षा मापदंडों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कोटा के मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए अब सौर ऊर्जा आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग की इस पहल से घने जंगलों में स्थित प्राकृतिक आवास और कृत्रिम जल स्रोतों पर बिना किसी रुकावट के 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी। गर्मी के मौसम में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकारियों की गतिविधियों को रोकने में ये प्रणाली बेहतर कारगर साबित होगी। अधिकारियों ने बताया कि इन अत्याधुनिक कैमरों की मदद से वन्य जीवों के व्यवहार का वैज्ञानिक डेटा जुटाने और उनकी टेरिटरी की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। और अब मौसम। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों शेखावाटी क्षेत्र और कोटा संभाग में भीषण लू का प्रकोप जारी है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है और तेज गर्म हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने और गर्मी में बढ़ोतरी की संभावना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की
0: तेज गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ ही ओआरएस कॉर्नर भी बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। वहीं विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी में हम बात करेंगे हालिया खबरों की, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों की, ग्राम रथ अभियान की और भीषण गर्मी और लू से बचाव के उपायों की। चिट्ठी की शुरुआत में सबसे पहले बात क्षेत्र की प्रमुख फसल के बारे में।

चित्तौड़गढ़ देश के प्रमुख अफीम उत्पादक जिलों में शामिल है। यहां केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की ओर से जारी विशेष लाइसेंसों के जरिए सीमित और वैध तरीके से अफीम खेती की जाती है। हर साल किसानों की ओर से उत्पादित गुणवत्ता के आधार पर सरकारी खरीद और तुलाई केंद्र बनाए जाते हैं। खासतौर पर यहां दो तरीकों से अफीम पैदा की जाती है, गम और CPS पद्धति। गम पद्धति में पौधों में चीरा लगाकर अफीम का दूध निकाला और सुखाया जाता है। वहीं सेंट्रलाइज्ड पॉपी स्ट्रॉ CPS पद्धति में बिना चीरा लगाए सीधे डोडों की तुलाई की जाती है। हाल ही में जिले में अफीम तुलाई प्रक्रिया पूरी हुई। नारकोटिक्स विभाग ने 3 खंडों के 756 गांवों के करीब 16,500 किसानों से अफीम खरीदी। इनसे लगभग 1,35,000 किलो अफीम खरीदी गई। इसके लिए पहले और दूसरे खंड के किसानों को लगभग 15,67,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं तीसरे खंड के करीब 1,000 काश्तकारों को 5,61,00,000 रुपए का भुगतान हुआ। CPS पद्धति के तहत 684 गांवों के 4,800 किसानों को 5,59,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने पीने के पानी की समुचित आपूर्ति को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने जिले की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पर्याप्त और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बंद पड़े आरओ की जल्द मरम्मत करवाने, हैंडपंपों के पास सोखता खड्डे बनवाने और जल संरक्षण के कामों में तेजी लाने की बात कही। जिला कलेक्टर ने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रचंड गर्मी के समय लू और तापघात की आशंका रहती है। ऐसे में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और श्रमिक वर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरदर्द, तेज बुखार होने की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। उन्होंने आमजन को तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने की सलाह दी। जिला

0: है। ऐसे में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और श्रमिक वर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरदर्द, तेज बुखार होने की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। उन्होंने आमजन को तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने की सलाह दी। जिला कलेक्टर ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। 25 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ ही गांव ढाणियों तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाए और इस मुहिम में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आदिवासी अंचलों में सरकारी योजनाओं की पहुंच मजबूत करने और जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन दिनों देश भर में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसे जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जनजातीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संवेदनशील प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाए। जिले के 7 ब्लॉकों की 76 ग्राम पंचायतों के 158 आदिवासी बहुल गांवों में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आदि सेवा केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने बेगू के जोगणिया माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री बिरला ने राजपूत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे फिजूल खर्ची पर लगाम लगती है, साथ ही एकता और भाईचारे की भावना में भी मजबूती आती है। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से करीब 91,000 से अधिक प्रकरण निस्तारित किए गए। इनमें लगभग 11 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य सरकार री साफ नीतियाँ राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रातौर सामी आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय स्थला माए राखण रा पहली रा हुक्म ने पाछो लेवणो नट्यो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावन सारू इस साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। और राज्य रा घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। आवता एक सप्ताह ताई सरहदी हलका में पारो 44-46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवण री शंका। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश ने क्रिटिकल मिनरल्स रो खास केंद्र बनावन सारू केंद्र और राज्य सरकार मिलर काम करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी री मौजूदगी माए आज जयपुर माए मुख्यमंत्री रा रहवास माथे राखी जी आला दर्जारी मीटिंग माए ओ फैसलो करीचियो। मीटिंग माए मुख्यमंत्री बाड़मेर और बालोतरा रा सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स से जुड़ियो नोडल अधिकारी नियुक्त करण रा हुकम दीना। वे भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण रा अहलकाराओं राज्य में पिछाण करीजी ठोड़ा ने जानकारी देवन बाबत कहो। इस मौके केंद्रीय मंत्री रेड्डी कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री आगे री सोच नीतियाँ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे कारण देश माए जमी हेटों खनिज निकालवा रा हलका माए घणो सुधार फियो है। वे कहो कि राज्य सरकार री साफ नीतियां और निवेश रे अनुकूल वातावरण राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रा तौर सामी आ रियो है। श्री रेड्डी कहो कि राजस्थान माए रक्षा सूरज री रोशनी बिजली बनावण और मोटर गाड़ियां बनावण रा हलका माए आ खनिजां री बढ़ती मांग पूरी करण रो बूतो है। वे प्रदेश में निवेश और उत्पादन बढ़ावन सारू खनन नु जुड़िया मुद्दा रा टेम सर निपटारा माथे जोर दीनो। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रा कार्यकारी निदेशक और राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता

0: था। प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति रो भरोसा दिलायो है। वह बतायो कि दुनिया में मौजूदा हालात रे कारण उपजी अनिश्चितता रे बावजूद राज्य रा सगला टर्मिनल डिपो और पेट्रोल पंप मथ तेल रो पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता कहो कि घरेलू ग्राहकों सारू रसोई गैस री पूर्ति सामान्य है। वह जनताओं अफवाह मथ ध्यान नहीं देवन री अरज कीनी। इन बीच पहली वाला केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आज झुंझुनू जिला में जनताओं ईंधन बचावन री अपील कीनी।
1: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रीतें होती है और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है तो ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र हित में है, तो आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने कितने कपड़े काफिले में कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था लेकिन मैंने भी काफिले में मना किया, हमारी ज्यादा गाड़ियां साथ नहीं गई, तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में है और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया और आगे भी निश्चित रूप से इसका अच्छा देखने को।
0: इन बीच सवाई माधोपुर जिला में पेट्रोल पंप मथ कम तेल देवन री शिकायत पाछे नाप तौल विभाग रा जांच दल जिला रा 11 पेट्रोल पंप री जांच कर जरूरी कार्रवाई कीनी। आ पेट्रोल पंप मथ कम तेल देवनु मिलिया पाछे संबंधित पंप रा नोजल सीज कर दिया चिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई रा तौरों फौजी सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और माली संकल्प ने एक सागे पेश करी चिया। सेना प्रमुख नई दिल्ली में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर मुद्दा माथे राखी जा सेमिनार में बोल रहा है। वह कहो कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत गहराई ताई वार करता थका आतंकी ढांचा ने नेस्तनाबूद करिया पाछे सोच समझ हर एक मकसद रा तहत रोकी चियो। जनरल द्विवेदी कहो कि शांति तय करण, विकास री रफ्तार तेज करण और दुनिया माए माहौल ने आपरा पक्ष माए करण सारू देश री ताकत रो इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ सागे करनु चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जनता री आवन जावन री ठोणाऊ लावारिस कुत्ता ने हटावन रा लारला हुकम माय किणी भांत री राहत देवन नटक्यो है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ री सदारत वाली पीठ अदालत रा ई बारा माय नवंबर 2025 माय दिया जया हुकम माय बदलाव री मांग करण वाली अर्जियां आज खारिज कर दीनी। अदालत एड़ा कुत्ता ने आश्रय स्थला माय राखण रा हुकम दीना। अस्पतालां, स्कूलां और दूजी ठोणा कुत्ता कानियों हमला करण रा वाकया रो हवालो देता था का पीठ कहो कि हुकम री पालना नी करण वाला अहलकारा ने अदालत री अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई रो सामो करनु पड़ सके है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर रो सुन रिया हो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने बेहतर और पर्यावरण अनुकूल बनावन सारू अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलावन रो प्रस्ताव है। इसारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माय आज जयपुर माय समीक्षा मीटिंग राखी जी चिणमाय ई परिवहन सेवावा और बसा री खरीदी रा काम री प्रगति रे बारा माय चर्चा करी जी। मीटिंग माय बताई जियो कि अगस्त महीना ताई राजस्थान रोडवेज ने 144 ब्लू लाइन बसा और 30 एसी स्लीपर बसा मुहैया करावन री ई जानकारी दी जी। बसा चलावन सारू प्रदेश माय 9 नुआ ई बस डिपो ई बनाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे माय जोधपुर मंडल रा रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन रो दौरो कर और व्यवस्थावां री जानकारी लीनी। वह स्टेशन परिसर माय साफ सफाई री व्यवस्था, पीवन रा पानी, प्रतीक्षालय और गाड़ियां उभीकरण री ठौड़ समेत मुसाफिरा ने मुहैया कराया जावन वाला न्यारा न्यारा सुविधा रो बारीकी जायजो लीनो। DRM पाली मारवाड़ जोधपुर बीच विंडो ट्रेलिंग री जांच कर और न्यारा न्यारा टेसना माथा हिफाजत जुड़िया कामा रोई जायजो लीनो। कोटारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व माय जनावरा री हिफाजत और निगरानी तंत्र ने मजबूत बनावन सारू अब सूरज री रोशनी मड़ी बिजली चालन वाला CCTV कैमरा लगाया जा रहा है।

0: इणो घना जंगला माए पानी रा कुदरती और इंसान कानियों बनाई जा स्रोता माथ 24 घंटा बिना रुकावट नजर राखी जा सकेला। अहलकारा रे मुजब नुआ कैमराओं वन विभाग रा फील्ड स्टाफ ने जनावरा रा व्यवहार उन जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी हासिल करण और हमारा इलाका रे निगरानी माए मदद मिलेला। प्रदेश री महिलावां ने गर्भाशय रा कैंसर री बीमारियों बचावन सारू चलाया जा रहा टीका लगावन रा अभियान रा तहत कोटपुतली बहरोड जिला रा मेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माथे हाल ताई 65 टाबरियां रा टीका लगातिया चिया है। अहलकारा ने मुजब गांवाई हलका माए स्वास्थ्य विभाग रे टीमा लगातार काम कर रही है। इणु 32 तादाद माए टाबरियां रे टीका लगाया जा रहा है। जयपुर जिला माए हर महीनारी 5 और 20 तारीख ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरा रा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियां री ओरों सवार 8-9 बजे ताई ग्राम पंचायतां और सरकारी स्कूलां माए खास शिविर लगाया जावेला। आम आए जनता ने योग प्राणायाम और कसरत रो अभ्यास करायो जावेला। इसा गई ANM और आशा कार्यकर्ताओं री मदद मौसमी बीमारियां बचाओ सही खान पान और साफ सफाई रा बारा माए जानकारी दी जावेला। अरब मौसम प्रदेश माए पाकिस्तान नू लागते सरहद कने रा हलका शेखावाटी हलका और कोटा संभाग माए जबरदस्त लू बाज रही है। आ हलका माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों है। मौसम विभाग रे मुजब 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान सागे चित्तौड़गढ़ सब 19 ठौर रहे हो। इन अलावा श्रीगंगानगर माए 45.9 अलवर माए 45.8 और पिलानी माए 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। राजधानी जयपुर माए आज पारो 43.2 डिग्री सेल्सियस ताई पूग गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता एक सप्ताह माए राज्य रा आतुणी हलका माए सरहद कने तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवण रा आसार है। वे बतायो कि आवता 3-4 दिन ताई प्रदेश रा कुछ हलका माए आंधी चालन री संभावना है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है।
0: तेज गर्मी और लू ने ध्यान रखता थका प्रदेश रा सगला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र माए खास इंतजाम करी चिया है। अस्पताल माए मरीजा सारू बिस्तर रखण सा गई ORS कॉर्नरी बनाई चिया है। इसा गई जनता ने गर्मियों बचाव रे बारा माए जानकारी दी जा रही है। न्यारी न्यारी थोड़ा सड़का माथे पानी रो छिड़काव करावन सागे लोगों दोपहरां री भगत जरूरी वेवन री सूरत माई बाहर जावन री अरज करी जा रही है। IPL क्रिकेट होड़ रा तेत आज जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम माए राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स बीच मुकाबलो फैला। वो मैच अमू थोड़ी देर पछे 7:30 बजे शुरू फैला। अंक तालिका माए फिलहाल 5वां नंबर री टीम राजस्थान रॉयल्स ने प्ले ऑफ दौर माए पुगण सारू वो मैच जीतनो जरूरी है जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स अंक तालिका माए आखिरी छोड़ माथे है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य सरकार री साफ नीतियां राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रा तौर सामने आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय स्थल माए राखण रा पहली रा हुकम ने पाछो लेवण नट्यो। प्रदेश माए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावण सारू ई साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। राज्य रा खणखर हलका माए जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। इंसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: हम
3: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7 बजे हैं।

चौपाल कार्यक्रम सुननीय सगळ्या परिवाराने बुरु बाईगी घणी घणी राम राम मोकळी मोकळी राम राम। किसान भाइयों, रोज आपां अखबारां में पढ़ा टीवी में देखा कठे न कठे सड़क के ऊपर कोई न कोई दुर्घटना का समाचार आपां ने मिले और बड़ो मन खराब हुए। आपां देखा जी कि आज की युवा पीढ़ी है, लगभग तो युवा पीढ़ी ही इसे समाचारों में मिले आपां ने, क्योंकि जिका साधन शहर के अंदर चलाण का है या थोड़ी दूरी का है बाने ले गए और जद आपां हाईवे पर जावा या दूरी की यात्रा करा तो कठे न कठे इस हादसा का शिकार हो जा। तो आम पर भी अगर मजबूरी हुए तो आपां ने करनो ही पड़े, यात्रा भी करनी पड़े, जानो आनो भी पड़े, गांवतरों भी आपां ने करनो पड़े। बाकी सबसे सुरक्षित जी को साधन है सरकार आपने उपलब्ध करा रखे, आपा बिगमा यात्रा करा और जे मजबूरन जानो भी पड़े तो बहुत सी सावधानियां जी की है वे आपने रखनी चाहिए। टाबरा ने तो बिल्कुल भी जी का दुपहिया वाहन आला है बाँसू दूर रखनो चाहिए। चौपहिया जी का वाहन है, आजकल नई नई तकनीक आई है, बहुत ही ज़्यादा तेजी से चल है, तो ऐसा साधन जी का है वे टाबरा ना देवा और बहुत ही मजबूरी हुए तो ही आप दूरी की यात्रा करा, आपको खुद को साधन लेंगे। दुपहिया वाहन लेंगे तो साधन आपा टालने की ही कोशिश करा, रात भी रात तो बिल्कुल भी ना निकला। जे जानो भी पड़े तो एक तो आपके साधन की जी की लाइट है बिना नीची रखा और बिना ठीक रखा। हमेशा ही बच्चा ना सिखावा कि आपा ट्रैफिक नियमों को जिका नियम बनेड़ा है वांगो बिल्कुल ध्यान रख गया, आपने साधन चलाना है और साधन हमेशा होले चलाना है। कई बिरिया देखा कि खेतों के अंदर जी का किसान भाई साधन लेके जावे, कोई आँख में मच्छर पड़ जानो या किन तरह का कोई कीट पड़ जानो और बहुत लंबे समय तक उपचार लेना पड़े तो चश्मा जी की है वह हमेशा आँख के ऊपर रखनी चाहिए। हेलमेट छू बिल्कुल भी आप दूर ना रहा, हेलमेट को बिल्कुल इस्तेमाल करा, क्योंकि समय कद भी माड़ो उसके कदी इसी घटना घटे तो अपनो बचाव अपने कन होना चाहिए। जिका किसान भाई गाडो लेके जावे वह गाडे के लारे रिफ्लेक्टर लगावे, या जका कन बड़ा साधन है और लाइटा नहीं लागेड़ी है तो रिफ्लेक्टर लगावे ताकि लारू आमते साधन ने भी ठा पड़ जाए और सामले साधन ने भी ठा पड़ जाए भी सड़क के ऊपर साधन है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपा जी का बच्चा है बने विशेष तौर से जी का साधन है, क्योंकि सीखना तो जरूरी है और ई उम्र में ही सीखी जाए तो गली मोहल्लों के अंदर शहरों में माँ गाँव में भी गाँव की गलियों के अंदर ही चला के साधन सीखना चाहिए। बड़ी सड़कों के ऊपर साधन लेके नहीं निकलना चाहिए और निकले तो बिल्कुल सावधानी से निकलना चाहिए। आ छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखांगा तो कठे न कठे ऐसा समाचार जी का आप सुना अंग में कमी आसी और आप सुख शांति से अपनो जीवन व्यतीत करांगा और मन खराब को नहीं होगा। बातचीत और कर सा सुन लिया एक भजन।

सुनियो भजन, किसान भाइयों, आपने जी की भारत देश की परंपरा है, रीति रिवाज है, व्रत है, तीज है, त्यौहार है, ऐ सारा बड़ा तरीके से मनेड़ा है और बहुत ही जरूरी है कि आप आने माना और आने निभावा, क्योंकि आपना जी का बुजुर्ग है, पे कोई ना कोई तरीके से आने बनायो ताकि ए आप अपने जीवन के माँ हमेशा ने सागे लेके चला, बिशु आपा ने बहुत लाभ भी हो सी। और जे बात करें आप व्रत की, तो व्रत भी एक इसी चीज़ चल रही है कि हफ्ते में एक दिन या दो दिन शरीर ने शुद्धि देवे। सारी चीज़ें अपनी विज्ञान से जुड़ रही है और आपा ने जीवन जीने का जिका नैतिक मूल्य है वह सिखावे। अब जिया गर्मी चलन लाग रही है तो बड़ो आपनों जिको रीत चलती आई है सदाशू के ई समय के माँ आपा पशुआंगो, पक्षियांगो, पेड़ पौधांगो आ सारांगो करा। त्यौहार हुए तो त्यौहार के अंदर देखा कि आपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा हुए। जिये ही त्यौहार आसी, चाहे दीपावली को है, चाहे होली को है, त्यौहार पर आपने घर की, आपने शरीर की एक ऊर्जा अलग से दिखाई देने लग जाए और आपनों मन जी को है बड़ो प्रसन्न रहे। तो तीज त्यौहार मनाना चाहिए और अन आपा जत्ते ही जीवा जत्ते ही माननो भी चाहिए। त्यौहार अपना बनेड़ा है, होली जिसो त्यौहार आपका सारा जी का वैर भाव है वह मिटागे और वापिस समन्वयता बिठानगो है। दीपावली की बात करा तो दीपावली पर मौसम बदले, सागे ही आपा अपने घर की साफ सफाई, रंग रोगन, बिंग अलावा घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी, तो ऐ चीज़ा आपने जीवन ने, आपने जीवन का जी का नैतिक मूल्य है बने कठे न कठे बढ़ावो देवाए। तो जरूरी है कि आपने बुजुर्गों का चलाएड़ा जीता भी रीत रिवाज है बने आपा माना और आपने जीवन में आपने सागे लेके चलना और बी धरोहर ने आपा आपने आगले जी की पीढ़ी है, अपना जी का बच्चा है, बने भी बतावा, बांगो अर्थ समझावा ताकि बांगो जीवन भी जीणो जी को है वो आसान हो जाए। की भी तरीके का रीत जी की आपने बुजुर्ग चलाई है, शादी के अंदर एक ब्याह करा आपा तो बिंग अंदर भी आपा इत्ता रीति रिवाज करा जिका कठे न कठे विज्ञान से भी जुड़ेड़ा है और आपने जीवन से भी जुड़ेड़ा है। तो ऐ सब चीज़ा आपा अपनी अगली पीढ़ी ने, अपने बच्चा ने सिखावा और बने बतावा कि जीवन जीण वास्ते ऐ सब चीज़ा जरूरी है और अन आपा आगे लेके चालनो है। सुन लिया एक और गीत।

सबसे बढ़िया जी की उपचार है वो है पीएसबी कल्चर को। पीएसबी कल्चर जब आप अपनी भूमि ने देवा तो वो माटी के माँ मौजूद जी को अघुलनशील यानी कि ठोस फास्फोरस हुआ है बिन गुड़ागे घुलनशील बना दे और बूटे के वास्ते जिका जरूरी पोषक तत्व है वह बूटे ने बढ़ोतरीकरण वास्ते जरूरी हुए वह पुगतो करे। इंगी इंगा बहुत ही ज़्यादा फायदा आपने मिले। एक तो खेता में जिकी डीएपी आपा गालेडी है बिन अघुलनशील बना गए बेकार कौन जान दे और विशेष तरीके को कार्बनिक अम्ल यूं वो जी को छोड़े बिशु वो जी को काम ना नालो फास्फोरस है वो भी घुल गए और पौधे ने सुलभता शू मिले और बढ़वार में मदद करे। बिशु वह के है कि उर्वरक काम पर जिको अपनो खर्च हो बिंग में कमी आ जाए क्योंकि अंदर से जब पूर्व पोषक तत्व बूटे ने मिलन लग जाए तो उपरों जिको घालन वाली रासायनिक खाद है बिना आप कम कर दें तो बीं पर होने वालों खर्चे की जिको है आपने बचत हो जाए। बिंग अलावा जड़ों को बड़ो मजबूती और शानदार विकास हुआ है। पीएसबी कल्चर खाली फास्फोरस ही कौन गुलाव है वो पौधे ने विकास वास्ते ईसा प्राकृतिक पदार्थ भी उपलब्ध करा दे जिका जड़ा ने मजबूत कर दे और जड़ों को गहरा विकास करे। मजबूत जड़ा पौधे की माटी और ज़्यादा पानी भोजन खींचने में भी मदद करे। जड़ मजबूत होएगी तो वो भोजन भी ज़्यादा खींचेगा पानी भी ज़्यादा खींचेगा और बहुत लंबे समय तक अगर पानी नहीं मिले तो भी बूटो जी को है वो मरे को नहीं। इसी व्यवस्था पीएसबी कल्चर कर जाए उपज और गुणवत्ता में वृद्धि हो जाए। इन प्रयोगों हुआ क्या है कि माटी की जी की जैविक सेहत है बस सुधर जाए। माटी के अंदर जिको कार्बनिक पदार्थ है वो ज़्यादा हो जाएगो और माटी की सेहत सुधरेगी तो जिकी उपज है बिंगी गुणवत्ता में सुधार होगी और गुणवत्ता जब बढ़िया होगी तो फसल का भाव जिका है वह आपने बढ़िया मिलेगा। और इंगे इस्तेमाल से पैदावार में 10-15% तक की जिकी वृद्धि है वह भी दर्ज करेड़ी है। एक तो खाद की बचत होगी मजबूत की जड़ा जिकी है वह मजबूती मिलन लगेगी। फसल जिकी है वह हरी होगी पौधों तेज बढ़ेगा और पत्तियां भी हरी भरी रहेगी। कणक में सरसों में चीने में जीरे में आम फसलों का उत्पादन देखियो है कि बढ़ो है पीएसबी कल्चर के उपयोग से। माटी की ताकत बढ़ी है पर्यावरण खतर भी बहुत बढ़िया है क्योंकि केमिकल खाद जब आप कम रेड़ांगा तो एक तरीके से आप जैविक खेती करेंगे और ज़मीन भी खराब को नहीं होगी तो पर्यावरण में भी बहुत बढ़िया सहयोग जी को है पीएसबी कल्चर को देखोगे है। सुख सहन करने की शक्ति हुआ है अभी आप बात करी कि पानी अगर ज़्यादा समय तक नहीं भी मिला तो भी बूटो जी को है वो मरे को नहीं। बीज उपचार में भी वो काम आवे बीज जब आप लगावा तो बिंग अंकुरण से पहला शुरुआती जी की बढ़वार है बा अच्छी मिले और बीज जी को है वो स्वस्थ रहे और नुकसान को नहीं हुए बीज में जिका रोग कौन लगे जब रोग कौन लगेगा तो कीटनाशक के ऊपर होने वालों खर्च भी जी को है वो कम होएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जी को है पीएसबी कल्चर को किसान भाइयों ने करना चाहिए और बीच हूँ अपनी फसल ने लाभ हो सी अपनी पैदावार अच्छी होगी तो मुनाफा अच्छा होगा। सुन लें एक और गीत।

सुन्यो गीत आपने कन की बाजार भाव भी पुगता हुए है। आज गंगानगर मंडी में सरसूंगा नीचे का भाव जी का है बैरिया 6800 रुपया और ऊपर में सरसों बिकी है 7410 रुपया। जो बिके है 2071 ले गए 2231 रुपया तय चीणों बिक्यो है 4651 नीचे में ऊपर में 5601 रुपया। कणक बिकी है 2368 रुपया नीचे में और ऊपर में 3000 रुपया। ग्वार बिक्यो है 5000 ले गए 5575 रुपया तई। जई बिकी है 3300 ले गए 3495 रुपया तई। और मूंग का भाव रहा 6500 रुपया। राइस नगर मंडी में आज कणक का भाव नीचे में रहा 2341 रुपया और ऊपर में बिकी 2645 रुपया। सरसों बिकी 6980 रुपया ले गए 7409 रुपया तई। चीणों बिक्यो 4850 ले गए 5495 रुपया तई। ग्वार बिक्यो नीचे में 5445 रुपया। ग्वार का भाव आज 5545 रुपया। जो बिकी 2001 ले गए 2101 रुपया ले गए 2175 रुपया तई। तो किसान भाइयों आज मंडिया का भाव रहा है। बात करा किसानी की तो किसानी में अब छोटा मोटा जे आप सावचेत रहा तो आप बढ़िया फसल ले लेंगे। अब भी जांत करी है जिका किसान भाई यहाँ बीजो नहीं है खेत बैगेरी पाड़ कर लिया पानी लगा के खेत की तैयारी कर लिया और बिंगे बाद में भी जांत करें। गेरी पाड़ जरूरी है क्योंकि गर्मियाँ हैं कीड़ा कांटा खत्म हो जिसी आगे खरपतवार की समस्या कौन रहेगी। आज समय तो ही अब हूँ चालू राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम सुनिए, भक्ति संगीत।

अभी आपने शकील बदायनी की रचना शमशाद बेगम की आवाज में सुनी। आइए आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुने आनंद बख्शी का ये भक्ति गीत।

अभी आपने कुछ भक्ति रचनाएं फिल्मों से सुनी। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात के 8 बजे हैं, लीजिए कार्यक्रम सुनिए एक ही फिल्म से।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में इस वक्त आप 20 नवंबर 1964 को रिलीज हुई फिल्म शक्ति सावंत की फिल्म संगीत में प्रेम कहानी वाली कश्मीर की कली के गाने सुन रहे हैं। फिल्म के गाने एस एस बिहारी ने लिखे, संगीत ओपी नैयर ने बनाया। आइए मोहम्मद रफी की आवाज में

कश्मीर की कली फिल्म में शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर प्राण और नाजिर हुसैन की मुख्य भूमिकाएं थी। फिल्म का संगीत और फिल्म के गाने उस वक्त भी और आज भी उतने ही कर्णप्रिय, उतने ही अच्छे। आइए सुने ये अगला गाना।

कहानी और पटकथा रंजन बोस की, संवाद रमेश पंत के, और एक बात कि ये शर्मिला टैगोर की पहली हिंदी फिल्म। आइए मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज़ों में ये दो गाना सुने, एस एच बिहारी का लिखा हुआ, ओ पी नैयर की मौसीकी।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम के लिए हमारी आज की फिल्म है कश्मीर की कली। आइए ये खूबसूरत गाना सुनें।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा सुपर शतरंज क्लासिक के 5वें दौर में ड्रॉ खेलकर आगे बढ़े और भारत की अंडर 18 पुरुष

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हमारे पास सबसे पहले आज जो खबर है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। दोनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि टेस्ट में केएल राहुल और एकदिवसीय फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के उपकप्तान होंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी।
1: दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया है, हालांकि जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। अगर टेस्ट टीम की बात की जाए तो युवा यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है। विकेट कीपिंग का जिम्मा ऋषभ पंत के कंधों पर होगा। साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डिकल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश राणा और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों के साथ एम सुथार, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे को इस टीम में स्थान मिला है। एक दिवसीय टीम की बात करें तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को श्रृंखला में मौका दिया गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस के आधार पर तय होगा। अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली भी एक बार फिर नीली जर्सी में नजर आएंगे। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर भी इस सीरीज का हिस्सा है। मानव सुथार, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे वो खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। श्रृंखला की शुरुआत 6 जून को न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच से होगी। इसके बाद 14, 17 और 20 जून को 3 एक दिवसीय मैच खेले जाएंगे। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो आईपीएल के इस रोमांच के बाद भारतीय टीम फिर क्रिकेट के मैदान में उतरेगी सफेद जर्सी और नीली जर्सी में, और सबकी नजरें स्वाभाविक हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी को देखने के लिए होंगी, और फैंस की भी यही दुआ होगी कि रोहित शर्मा जल्दी फिट हों और नीली जर्सी में मैदान पे चौके छक्कों की बारिश करते हुए नजर आएं। और अब रुक करते हैं आईपीएल क्रिकेट का, जहां जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11 ओवर में एक विकेट खोकर 137 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए तो राजस्थान 5वें स्थान पर है और वो चाहेगी कि इस मैच को जल्द से जल्द जीता जाए और किसी तरह प्लेऑफ की जो दौड़ है जिसमें एक ही स्थान बचा हुआ है उसमें अपनी दावेदारी कुछ और मजबूत की जाए। दूसरी तरफ लखनऊ है जो इस प्रतियोगिता के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, तो स्वाभाविक है कि चाहेगी कि जाते जाते कुछ अच्छी विदाइयां और कुछ अच्छी मेमोरीज लेके आगे बढ़े अच्छे आने वाले सीजन के लिए। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया। सुनते हैं चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले का पूरा हाल।
2: आईपीएल 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद अपनी दो और प्लेऑफ की टीमें मिल गई हैं। कल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खुद तो प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का किया, साथ ही गुजरात टाइटंस का भी प्लेऑफ में स्थान फिक्स कर दिया। और इस हार के साथ ही चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं और भी सीमित हो गई हैं। मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए, जिसमें संजू सैमसन के 27, शिवम दुबे के 26, कार्तिक शर्मा के 32 और डेवाल्ड ब्रेविस के 44 रन का योगदान शामिल रहा। हैदराबाद की ओर से कप्तान पैट कमिंस ने 3 और साकिब हुसैन ने 2 विकेट लिए। 181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कल ईशान किशन मैच के हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने 47 गेंद में 70 रन की पारी खेली। किशन का बखूबी साथ हेनरिक क्लासन ने दिया, जिन्होंने 26 गेंद में 47 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत हैदराबाद ने 19वें ओवर में 5 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: कल जब हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की थी तो हमारे सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एकमात्र टीम थी जो प्लेऑफ में पहुंची, और जब कल का मैच खत्म हुआ चेपॉक स्टेडियम में तो एसआरएच खुद तो गई और अपने साथी गुजरात को भी प्लेऑफ में लेके चली गई है। अब स्थिति यह है कि प्लेऑफ के लिए इस गाड़ी में 4 में से 3 सीटें भर चुकी हैं, एक स्थान अभी भी खाली है, जिसके लिए दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ पंजाब है जो अंक तालिका में 4थे स्थान पर है, राजस्थान रॉयल्स 5वें नंबर पर है, चेन्नई और दबे पांव से दिल्ली और कलकत्ता भी अभी उम्मीद और समीकरण बैठा रहे हैं कि किस तरह इस गाड़ी की 4थी सीट पे जगह बना करके

0: अहमदाबाद तक का सफर तय किया जाए। और अब क्रिकेट के बाद रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से हो गया है, जहां कुआलालंपुर में भारतीय खिलाड़ियों ने मिले जुले परिणामों के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का हाल।
1: महिला सिंगल्स के क्वालिफायर मुकाबले में अश्मिता चालिहा ने चीनी ताइपे की पा युपो को 21-23, 21-16, 21-16 से हराकर मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। वहीं आकर्षि कश्यप को दक्षिण कोरिया की पार्का उन से हार का सामना करना पड़ा, जबकि मिक्स डबल्स के क्वालिफायर मुकाबले में एन सिक्की रेड्डी और राधिका शर्मा की जोड़ी ने मलेशिया के दातू अनिफ इसाक दातू असरहा और क्लारिसा सेन को 21-15, 21-17 से रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की जोड़ी ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टूमा जूनियर पोपोव को 21-19, 21-15 से मात देकर टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला डबल्स में कनाडा की क्रिस्टल लाई और जैकी डेंट ने अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की जोड़ी को परास्त करते हुए प्रतियोगिता में उनका सफर समाप्त कर दिया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो प्रतियोगिता का औपचारिक आगाज आज से हो गया है और कई क्वालिफायर्स खेले गए, और जो भारत के लिए सबसे अच्छा नतीजा रहा वो ये रहा कि भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी अब प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत को कल भी कई अहम मुकाबले खेलने हैं, कई भारतीय स्टार खिलाड़ी कल कोर्ट पे उतरेंगे, और इन खिलाड़ियों की जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सहयोगी विशेष। विशेष, ये बताइए कि कल भारत के लिए नज़रें जो हैं किन खिलाड़ियों पर होने वाली हैं, खासकर सिंगल्स में।
2: जी शक्ति, कल कई भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत करते नजर आएंगे। इनमें पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, थरुण मनेपल्ली और किरण जॉर्ज पर नजरें होंगी। महिलाओं के सिंगल्स में कई युवा खिलाड़ी भारत के लिए चुनौती रखेंगे। तन्वी शर्मा, अनमोल खरब, देविका सिहाग तथा ईशा रानी बरुआ, अस्मिता चालिहा, मानविका बंसोड़ और अन्य भारतीय खिलाड़ी से काफी उम्मीद होंगी।
0: जी बिल्कुल, अस्मिता ने आज क्वालिफायर्स के जरिए पहले राउंड में प्रवेश किया है। सिंगल्स का हाल रहा, डबल्स में कल भारत को अपने किन खिलाड़ियों से सबसे अधिक उम्मीदें होंगी?
2: देखिए, डबल्स में महिलाओं में पांडा बहनें अपना दमखम दिखाएंगी, वहीं मिक्स डबल्स में रुत्विका, शिवानी गड्डे रोहन कपूर के साथ खेलती नजर आएंगी। जबकि एक नई जोड़ी भारत के लिए है, जिसमें अशित सूर्या और अमृता प्रथमेश अपनी चुनौती पेश करेंगे।
0: जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि कई युवा खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। खासकर पांडा बहनें काफी संतुलन के साथ जो है उतरती हैं और एक बहुत अच्छा तालमेल दिखाई देता है, जहाँ पे श्वेत पर्णा और रूपर्णा पांडा जब भी कभी अपने मुकाबले खेलती हैं। और अब बैडमिंटन के बाद बात करते हैं शतरंज के कुछ दावपेचों की, जहाँ भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने सुपर शतरंज क्लासिक के पांचवें दौर में अमरीकी वेस्ली सॉ के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही जर्मनी के विंसेंट कीमर ने अपने आधे अंक की बढ़त बरकरार रखी है। वह 3.5 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। कीमर के बाद प्रज्ञानानंदा और नीदरलैंड के अनीश गिरी दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने संयुक्त बढ़त बना रखी है। और अब चेस के बाद रुख करते हैं हॉकी के मैदान का, जहां भारत की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में 6-3 से एक शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। जबकि भारत की अंडर 18 महिला टीम को मेहमान टीम के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये महिला टीम की लगातार तीसरी हार रही। पुरुष और महिला टीमें दोनों ही कल अपने अपने सीरीज के जो हैं चौथे मुकाबले खेलने के लिए उतरेंगी। और अब रुक करते हैं फीफा का, जहां फीफा धीरे धीरे वापस, फीफा का बुखार जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे प्रतियोगिता करीब आ रही है फीफा विश्व कप की, कई टीमों ने अपने ऐलान करना शुरू कर दिए हैं खिलाड़ियों के। इसी कड़ी में फीफा विश्व कप 2026 में नेमार को ब्राजील की टीम में शामिल किया गया है। नेमार 2.5 साल बाद अपनी नेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं। 34 वर्षीय खिलाड़ी की लोकप्रियता का कोई मतलब बैरियर नहीं है। शानदार खिलाड़ी जब भी उतरते हैं उनसे उम्मीदें होती हैं दर्शकों को, उनके फैंस को। और अब तक 128 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 79 गोल उन्होंने किए हैं। तो कोई दो राय नहीं कि एक बहुत शानदार खिलाड़ी वापसी करता हुआ फीफा जैसी बड़ी प्रतियोगिता में नजर आएगा। उधर प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल एफसी कल बर्नेल एफसी पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में ऊपर आ गया है। आर्सेनल के लिए मैच में एकमात्र गोल काई हैवर्ड्स ने किया। इंडियन ओपन सफरिंग टूर्नामेंट का आयोजन 29 से 31 मई तक मैंगलुरु में होगा। ये प्रतियोगिता जापान में इस साल के आखिरी में होने वाले एशियाई खेलों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वहां पे पहुंचने से पहले आपको एक बड़ा मंच मिलेगा।

0: जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी पूरी तैयारियों को अंतिम जामा पहना सकते हैं, अंतिम रूप दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है भारतीय सफरिंग महासंघ SFI के तत्वाधान में किया जाएगा। और ISL की बात कर लेते हैं, जहां ISL फुटबॉल में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने मोहम्मडन FC को 2-0 से हरा दिया। वहीं कल खेले गए मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स FC ने गोवा FC को 2-1 से शिकस्त दी। भारत के पूर्व बल्लेबाज और दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि युवा खिलाड़ियों को भारत की जर्सी में खेलने के लिए त्याग करने होंगे, क्योंकि शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती है। सचिन तेंदुलकर अहमदाबाद में SRT 10 अल्टीवेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये सेंटर देश में खेल संस्कृति बढ़ाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहा है।
1: SRT 10 और एल्टावॉल एक पार्टनरशिप कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सेंटर हमने इनॉग्रेट किया है आज, जहां पे बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स है और फैसिलिटीज आर मैग्निफिसेंट। और द आइडिया इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम स्पोर्ट्स लविंग नेशन टू स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन।
0: तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर सचिन ने कही कि भारत अब एक स्पोर्ट्स लविंग देश से एक स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे सिर्फ खेल को देखना ही नहीं, उसमें कैसे बढ़ सकते हैं उसके नतीजे भी हमें दिखने लगे हैं। कई खेल जहाँ भारत अब तक प्रतिभागिता नहीं करता था, वहाँ बढ़ रहा है और लगातार अच्छे प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। सचिन ने युवा पीढ़ी को सीख देते हुए ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार जब भी खेलने जाओ तो सफल हो जाओ, लेकिन हर बार आपको नई तैयारी के साथ जाना बहुत जरूरी है।
2: We want our children to be successful, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी and above all बच्चों को freedom देना पड़ेगा। हर बार आप खेलने जाओगे तो successful नहीं रहोगे, मगर हर बार तैयारी करके जा सकते हो। Okay? Success is never guaranteed, but your preparation and your discipline, focus, ये सारी चीजें, जैसे कि हम कहते हैं कि to tick all those boxes, वो तुम्हारे हाथ में है।
0: जी बिल्कुल। और इस कार्यक्रम में ICC के अध्यक्ष जय शाह और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे और ये शानदार सेंटर अब युवाओं को अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। और सचिन की बात की तो बात करते हैं उनके एक फैन की भी, कि साहिल उद्यानवी का शेर है कि हजार बर्क गिरे आंधियां उठें वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान आमिर हुसैन लोन की कहानी पर जो अब सिनेमा के बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है, बिना हाथों के अपना भविष्य लिखने वाले इस खिलाड़ी की फिल्म अन आर्म्ड शोल्डर की घोषणा कांस फिल्म फेस्टिवल में कर दी गई है। अपने सामने खड़ी हर चुनौती को अपने मजबूत इरादों से बौना साबित कर देने वाला एक खिलाड़ी आज लाखों युवाओं की प्रेरणा है। आइए सुनते हैं अपने फिल्म की घोषणा के बाद इस खिलाड़ी ने क्या कहा और क्या अपने अनुभव साझा किए।
3: मैं बहुत मुश्किलात उठाने पड़े जब 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं डटा रहा, अपने आप को मजबूत किया और कभी मैं ये नहीं सोचा था मैं यहाँ तक इन मुकाम पर पहुँचूँ, लेकिन ये कभी मैंने जहन में नहीं सोचा था कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है और वो मेहनत है, वो सपना है जो मैंने अपने जहन में लेकर ये किया कि मैं एक दिन, ऐसा भी एक दिन आएगा जब मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ, मैं क्रिकेटर बनूँ। जब मैंने सचिन सर ने मेरी जर्सी पहनी और सचिन सर ने मुझे मतलब इतने तारीफ की, तो मैं वो बयान कैसे करूं। और इस फिल्म
0: जी बिल्कुल एक बहुत बड़ा लम्हा था उनके लिए। और श्रोताओं समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और अपने सुझाव हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी

0: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
0: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में

0: भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश यानम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations, comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo

0: today.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है. इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे.
0: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है. नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं. पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है. तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं.
0: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
1: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए. वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे. हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है. और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड.
0: स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड एंड डेनमार्क रिटरेटेड द कमिटमेंट टू शेयर्ड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, अ रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर एंड अर्जेंट रिफॉर्म्स इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस इन टुडेज चेंजिंग वर्ल्ड. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
2: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security and port-related cooperation as key priority areas for bilateral discussions.
3: Defense will be an important area where we are going to see how we can boost industrial partnerships. Both countries attach a great deal of importance to maritime security, and we are looking at strengthening our respective supply chains, building resilient trade partnerships, energy security, and also to ensure that the industrial ecosystems of the two countries become competitive globally.
2: This is Suparna Bhatia from Rome.
0: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today called for deeper collaboration between industry and government to advance ease of doing business, enhance India's competitiveness and accelerate the country's journey towards Viksit Bharat. The minister was speaking at the India Business Reform Summit in New Delhi. Mr. Goyal said the present global situation and geopolitical uncertainties should be viewed as an opportunity for India to strengthen supply chains.
4: That we will convert

0: सांवरा थारो करूँ गुणगान, ए मारो रंग रंगीलो राजस्थान। तो ए बात है सा आपने रंग रंगीले राजस्थान की, आपने राजस्थान के माँ हर ऋतु को जो असर है वो पूरो दिखे सा। तारा फोन कॉल देखो आन लाग रहा है, एर आप शामिल भी करांगा, पर कार्यक्रम की शुरुआत में आप थोड़ो जिक्र करा कि आकाशवाणी का जेका स्वर्णिम 90 साल जेका है वह बहुत ही बढ़िया रहा। रेडियो जेको है वो आप वो एक नयो रूप लेन लाग रही है। रेडियो सुनने वाला जेका है अपना साथी है श्रोता है वह आज रेडियो के ऊपर भी कार्यक्रम सुन लाग रहा है, मोबाइल ऐप के ऊपर भी कार्यक्रम सुन लाग रहा है। शिक्षा है संस्कृति है अपने देश की, अपने रंग रंगीले राजस्थान की जेकी निराली बातें हैं वह सारी की सारी रेडियो आज आप सुनन लाग रहे हैं, जुड़ेड़ा हाँ कला शिक्षा संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम जेका है वह भी रेडियो के माध्यम आगो आगे पहुँचे है। और आज गए ई दौर गए माँ रेडियो एक बहुत मोटो आयाम जेको है वो स्थापित करियो ऐसा। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत करा ई फोन कॉल के साथ। हेलो
1: जी, राम राम जी।
0: राम राम जी, कार्यक्रम हेलो गौरबंद कौन बोलो सा
1: जी? गांव बनाला हनुमंतो विनोद माइल बोलू जी।
0: विनोद जी माइल, तो घणो सारो स्वागत है कार्यक्रम हेलो गौरबंद के माए। बताओ के बाता चीता है, के मौसम का हाल है और कितनी गर्मी पड़न लाग रही?
1: गर्मी बहुत पड़न लाग रही है जी।
0: लू लाऊ बचेड़ा हो?
1: हाँ बीमार हो गया है करेकर तो।
0: बस ध्यान रखो जी, क्या है गर्मी गई मौसम गए माँ ताती लू गए माँ घरों बाहर निकला नहीं तो एक तो सर ढकेड़ो होना चाहिए, सिर के ऊपर गमछो होना चाहिए या रमालियो जो कहना पा बोला तो वो जरूर रखना चाहिए। बताओ आज कौन लोग है थारे सागे?
1: जी मेरी घराली सीमा बेटी लक्षिता यशिका माँ विद्या देवी सारा जी परिवार बैठे।
0: तो आज के सुना दिया
1: जी? मैंने चंपा मेथी कोई सुना दिया।
0: के सखी थारी प्रीतड़ी तो घर घर भटका खाए, सखी थारी प्रीतड़ी तो घर घर भटका खाए, थे थारो मनड़ो काठो कियो थारो पंछी परदेसा जाए।
2: सखी थारी प्रीतड़ी तो घर घर भटका खाए, थे थारो मनड़ो काठो कियो थारो पंछी।

0: हेलो
1: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो गौरबंद।
0: सर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। रामा श्यामा
0: रामा श्यामा जी, सर
1: कौन बोलो सा?
0: दादरी गेट भिवानी हरियाणा से कीर्तन मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
1: बहुत सारो स्वागत है थारो कार्यक्रम के। माँ
0: ठीक हो सर? आकाशवाणी सूरतगढ़ ठीक है? परिवार
1: सब मौज है जी, ऊपर वाले की
0: अच्छा
1: अच्छी
0: अच्छा
1: कृपा है। किशन जी के काम धंधा करे करो?
0: जी, चाय की दुकान है सर।
1: वाह जी वाह, चाय पिलाओ थे सारा ने।
0: पिवा जी,
1: बहुत बढ़िया, तो माने ही पिला दियो कभी।
0: आप पियो ना आओ।
1: बिल्कुल आवांगा,
0: हाँ
1: अगर ऊपर वाले की
0: आ
1: मर्जी
0: जाओ,
1: भी तो जरूर आवांगा सा।
0: जरूर आओ।
1: तो चाय के सागे सागे रेडियो सुनो,
0: रेडिया
1: कार्यक्रम जो को है वो मोबाइल पर सुनो कि रेडियो में सुनो?
0: मोबाइल पर सुना जी, तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम आ रहे हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, रेडियो का साफ सुथरा नहीं रहते आती थी, लेकिन ये मोबाइल सुनते हैं तो आप पास ही बैठे हो जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जो को मोबाइल ऐप है न्यूज़ ऑन AIR बिंगमा, बहुत बढ़िया जो को प्रसारण है वो सुनाई दे
0: हाँ
1: वैसा।
0: जी,
1: तो किचा किचा कार्यक्रम बढ़िया लगे थाने?
0: सारे का प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा जी, सारे एक से एक बढ़िया हो रहे हैं आजकल तो। बहुत कार्यक्रम भी बढ़ा दिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कौन लोग है थारे सागे?
0: आज ही बच्चों के नाम लूंगा मैं, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, कोई भी गीत सुना देना
1: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो गौरबंद।
2: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार। रामा श्यामा कौन बोलो सा?
2: हाँ, राम राम सा। और मैं दशरथ सेन बोल रहा हूँ।
1: दशरथ जी कठे शू बोल रहे हो?
2: यो अटे सीतामू रोड नाटा राम थी जिला मंदसौर पड़े है
1: मंदसौर शू?
2: जी।
1: वाह सा वाह, तो आकाशवाणी सूरतगढ़ का कार्यक्रम जो का है बे लगो लग सुनो थे?
2: हाँ, सुबह 5:50 पर चलावा, चू की आवाज आवे वन के बाद वंदे मातरम करा, जय घोष करा, वन के बाद सूरतगढ़ की आवाज 80 पोस्ट साहब के पूछो मत,
1: वाह जी
2: साहब आवाज में।
1: वाह जी वाह, इतो थे मन लगा गए एर कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ सुनो, इन वास्ते थारो बहुत सारो धन्यवाद ऐसा। आज कौन लोग है थारे सागे?
2: पूरा परिवार है साथ में।
1: वाह जी, के सुनाओ आज?
2: के सुनाओ आज तो देखो गर्मी घनी चल रही है, तो सीमा मिश्रा की आवाज में एक गर्मी गीत है राजस्थान की भाषा में,
1: तावड़ा मंदो पड़ जा।
2: हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आकाशवाणी सूरतगढ़ के प्रोग्राम, आप लोगों की मेहनत और आकाशवाणी सूरतगढ़ कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है, इसकी पहचान बहुत दूर तक है। पहले हम जानते नहीं थे कॉटन सिटी, ये आकाशवाणी का सूरतगढ़ कॉटन सिटी चैनल है और यहाँ से प्रसारण हो रहा है, दुनिया भर में जा रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत अच्छी बात है सा के अब मोबाइल ऐप के ऊपर भी आपा कार्यक्रम जगह है वह सुन सका न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।
2: 2005 में रेडियो था, उससे पहले भी हमारे

0: आसपास सुनते थे, तो 2005 में हमने रेडियो सुनना शुरू किया। 2000 से मैं रेडियो सुन रहा हूँ, लेकिन उससे पहले घर में रेडियो चलता था। मेरे समझ में आए उस टाइम पर कॉटन सिटी को मैंने ट्यून किया था, उस टाइम पर 6:10 से 6:40 तक आपका प्रसारण मिलता था। उसके बाद जैसे ही सूरज अपने सर पर आता था तो आपका प्रसारण दब जाता था।
1: सुबह सुबह गए समय गए माँ पहला फ्रीक्वेंसी जकी है, बढ़िया रहती रथो थाने भक्ति संगीत वंदना कार्यक्रम सुनाई दे तो
0: बहुत जी, वंदना कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है आपके यहाँ से, बहुत ही बढ़िया होता है, समझाया भी जाता है कि इस भजन की खासियत क्या है।
1: तो सुनो सा

0: हेलो गौरबंद।
1: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो गोरबंद।
0: राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जगदीश जो क्या बोलूं, गांव घमंडिया हूँ।
1: वाह जी, जगदीश जी, घणो सारो स्वागत है थारो कार्यक्रम हेलो गोरबंद में।
0: जी, धन्यवाद। हम बात करके दूसरों सो जो है
1: बिल्कुल होनो ही ऐसा, आपनी माइड भाषा को मीठो सो कार्यक्रम है।
0: बहुत ही अच्छा लगा मैंने, और हर मंगलवार में इंतजार रखा
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मैं आज जो मौसम अनुसार एक श्रोताओं अपील करा, पानी है ठीक है, बर्तन के जानवर वास्ते जरूर रख।
1: बहुत बढ़िया बात है ऐसा।
0: हाँ जी, क्योंकि अपन तीस लागे तो बन भी बापन तीस लागे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आज थे माने कोई लोक भजन सुना।
1: बिल्कुल, लोक भजन थाने सुनावांगा। अभी के काम धंधा चल रहे थे तो खेती बाड़ी को काम करे करो।
0: नरमो बीजना ही खातर पानी लगाए हुए जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो नरमे की बिजाई लेट कौन करने लाग रहा?
0: नहीं लेट कौन है, तो 5-7 दिन कोई लेट कौन है,
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया बात
0: क्यों
1: है।
0: पहला तो मैं दंखड़े जाता हूँ भी खतरे कदे कुरंद जाए नरमो को कुंडी फेरनी का दोबारा बीज में भी खतरे तो बीजे कौन है।
1: अभी मौसम तो देखो है वो ठीक चल रही है, थोड़ी गर्मी ज्यादा है।
0: गर्मी तो है पर मैं दंखड़े रवान दिया वो सिस्टम कौन, तो नरमो लग जाए बात कौन है।
1: बिजाई खातर अनुकूल है अभी टाइम जो
0: हाँ
1: है।
0: बिजाई खतरे तो बोले तो गर्म छुट्टी चल रहा सर।
1: वाह जी वाह। तो आज कौन कौन लोग है थारे सागे जी, नाम ले तो स्वागत है।
0: सुरेंद्र है, विनोद है, ज्योति, सरिता, अन्ना, तन्ना, सचिन।

0: राम राम जी, मोकला सारा राम राम, कुण बोलो सा।
1: गांव लुदेश करूं पप्पू राम गात बोलो श्रीपाल जी।
0: वाह जी वाह, पप्पू राम जी घणो सारो स्वागत है थारो कार्यक्रम हेलो गोरबंद के मां।
1: शुक्रिया जी, गोरबंद प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया लागे
0: लागड़ो ये।

0: આપણે દિલનું જોડેડું હે આપણી માયડ ભાષા કો કાર્યક્રમ હે અરે સારા હું બઢિયા બાત આ કે થે ઇતો મન લગા કે કાર્યક્રમ સુણો ઈ વાસ્તે બઢિયા જ્યાદા લાગસી સા તો પપ્પુ રામજી આજ કુણ કુણ લોગ હે થારે સાગે
1: સબકા જી રાત તો આજ જો બીતી હે સાસ કી જે રાદુ મિલાને કી હે બસંત સમજી હે રમેશ આજ બાજોરિયા કી હે ઓર બદમાલ કી દાદી હે બાસ લુણા કી હે કિંતુ સ્વામી હે સબકે શર્મા ટકાવાઈ
0: વાહ જી વાહ તો આજ કે સુણાવા થાને
1: આજ સીમા મિશ્રા જી આજ મે કોઈ જી ગીતા
0: हेलो
2: आकाशवाणी सूरतगढ़।
0: हाँ जी आकाशवाणी सूरतगढ़।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार कार्यक्रम हेलो गोरबंद कौन बोलो सा?
2: पृथ्वीराज पूनिया निवेदन कर रहा हूँ 26 की पचोड़ा के पास।
0: पृथ्वीराज जी पूनिया
2: जी।
0: बहुत सारो स्वागत है थारो राजस्थानी भाषा के माइड भाषा के कार्यक्रम हेलो गोरबंद के माए। आई कहना चाहूँ के मौसम जो है वो अभी चल रही है गर्मी को के विचार है और लू हूँ ताती हूँ बचेड़ा हो नी
2: लू तो एक तो हार्ट के बाल में ऑपरेशन करवा रहे हो और फिर दो नार बोलो की बाईपास सर्जरी करवाई मतलब तापमान है जब फिर अंधेरी आजकल शाम अंधेरी आज है।
0: बिल्कुल बिल्कुल देखो सा वो अपनो जो राजस्थान है नी हर रुत जबकि है वो आपको रंग दिखावे चाहे वह गर्मी की वह सर्दी की वह बरसात की वह आंधी की वह तो अभी लूगो ताती को गर्मी को जो मौसम चालन लाग रही है नवतपा भी आन लाग रही है तो प्रकृति जकी है बा आपको रंग तो दिखावे ही है और आपने पूरी सावधानी जकी है बा रखनी चाहिए जदि तो आप कवानी बात करानी के पेड़ जका है वह ज्यादा हूँ ज्यादा लगाना चाहिए गर्मी सर्दी बरसात सारी चीज़ों वास्ते सांस लेने वास्ते प्राणवायु वास्ते जकी प्रकृति है बिना बचाण वास्ते आपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए जितनी ज़्यादा हरियाली होगी तो बा भी गर्मी ने कम करेगी और आपने राहत मिलेगी।
2: नाम बोल दूँ?
0: बिल्कुल बोलो सर।
2: पत्नी का नाम है शर्मा देवी, बड़ा लड़का देवी दत्त, छोटा शिव दत्त, पोते हैं गौतम और विक्रम, छोटा पोता है वो है आनंद, एक पोती है वो चेतना।
0: तो आज के सुनावा था ने?
2: माने सुनाओ चांद चलियो गिरनार, किरतियां ढल रही है जी ढल रही।
0: सुनो सा तारी पसंद को। हाँ।

0: हेलो। हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी। कार्यक्रम हेलो गौरबंद, कौन बोलो सा?
0: हाँ मैं सर पंजाब से बोलूँ था, अहमदगढ़ से मोहम्मद अनवर अंसारी। मारे को बहुत अच्छा लगा जब फोन लगा के ना गौरबंद में, बहुत मन खुशी हुई। मैं क्या परमात्मा करे हमारा फोन कॉल उठ जावे एक बार।
1: बिल्कुल जी। अब देखो, एक आपा वो भी थोड़ो नियम बना दियो के श्रोता एक कार्यक्रम में फोन करे तो कम कम 1 महीने तक दूसरे
0: हाँ
1: फोन
0: जी
1: नहीं
0: हाँ
1: करे,
0: ये जी
1: ताकि दूसरे
0: आपकी
1: श्रोताओं
0: सारी
1: को
0: बात मानते हैं जी।
1: नंबर आ जाए। हाँ
0: पहली बार कॉल लगी है, हमारे को बहुत खुशी होती है। मेरा फोन लगता है कि ना सूरतगढ़ बहुत देर से सुनता हूँ, कॉटन सिटी चैनल।
1: आज के सुनावा थाने?
0: सर कोई मर्जी अपनी पसंद का सुना दीजिए, हमारे को बहुत अच्छा लगता है कि आप परिवार के साथ रात को प्रोग्राम सुनते हैं, जैसे गीत गंगा गोरबंद मन भावना, बहुत अच्छा लगता है हमारे को।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। आकाशवाणी सूरतगढ़ एर सारो स्टाफ जेका अपना सुनने वाला श्रोता है वो एक अपनो परिवार है और
0: हाँ
1: एक
0: जी हाँ
1: दूसरे से
0: बिल्कुल सही
1: जुड़ाव है।
0: बात है सर आपकी। नाम मैं लेना चाहूँ सर अपने परिवार के, मोहम्मद अनवर अंसारी तो हमारे का नाम ही है, और रीना बेगम है हमारी मिसेज, मोहम्मद जावेद अंसारी, सिराज अंसारी, महाराजिया सुल्ताना, छोटी सी बेटी है आफिया अंसारी। सारों
1: बिल्कुल
0: परिवार के साथ मिलके प्रोग्राम सुना है गौरबंद। राम राम श्रीपाल जी।
1: राम राम जी। कार्यक्रम हेलो गौरबंद, कौन बोलो सा?
0: हेलो गौरवंद, ईरानी वाला पहुंच गया जी। नहीं
1: ईरानी लाल आ गया? लाडले प्रोग्राम आयडा तो कोनी?
0: जी आएगा बाहर
1: अच्छा
0: सर।
1: अच्छा स्वागत है ईरानी लाल सारे श्रोताओं को, सुभाष जी को।
0: बहुत खुशी हुई श्रीपाल जी, माइड भाषा प्रोग्राम है, महीने बाद कौन शामिल हो यार, बाकी नहीं और भी श्रोतावा ने अब आगे हूँ मौके देख रहा हूँ जी। आज मेरे मिली है तो 100% कोशिश रखांगा कि 1 महीने अंतराल जरूर होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपनों पूरा परिवार है और सारा जेका सुनने वाला अपना श्रोता है भाई बंधु, तो सारा नहीं मौको मिलना चाहिए, सगड़ा को फोन भी लाग जाए और अपनी बातचीत भी चलती रहे।
0: तो अब तो चलो गर्मी की काफी ज्यादा शुरुआत हो चुकी है जी, सारा ध्यान रखे बच्चा बुजुर्गों, बेजुबान पशु पक्षियों भी।
1: बिल्कुल, क्योंकि गर्मी गए ये मौसम गए माँ बेजुबान जेका जीव जंतु जितना भी है तो अपन व्यवस्था करनी चाहिए पानी की छाया की जितनी अपने हो सके, तो पुण्य को काम भी है और एक अपने दिल ने बहुत मोटो सुकून भी मिले।
0: सुनील जी को धन्यवाद करा, बस श्रोताओं के साथ हूँ, व्हाट्सएप को कार्यक्रम शुरुआत करी है दी हूँ, बहुत अच्छी पहल है जी। हाँ
1: बिल्कुल, क्योंकि अपना श्रोता जेका है सुन नाला वह जुड़ेड़ा है तो आकाशवाणी के पूरे परिवार की रीढ़ है सा सारा श्रोता जेका है।
0: मेरे सागा है जी, श्रीपाल जी घर का है, बिमला देवी चाहे हिंदू वाला पार्वी देवी, लड़का है मानसू सरवण जी रिणवा यारीली तारीख विनोद जिंजा पवन जिंजा और डॉक्टर राजू।
1: तो आज के सुनावा थाने?
0: श्रीपाल जी गीत वैसे तो सारा ही बढ़िया है, और एक गीत है मेरा फेवरेट, केजड़ी की छाया ढलकी बातों मोड़ो ले आई, लोग भी तो बहुत सुनोगे।

0: की मिठास है, कुदरती मिठास है हुकुम,
1: कुदरती मिठास है, भाषा के माँ, बोली के माँ मिठास, आओ भगत, मान सम्मान, आदर सत्कार। आपने
0: अच्छा तो मैं कोई बात करूं हुकुम, अपना जो बुजुर्ग ने टाबरों ने संस्कार एड़ा दे के टाबर मान लो मोटर मत बैठो पग लावे नी तो कह रहा सोरा पग में तेरा सर मासी ने पेट दूगी या पगर का बैन मान लो होंगना आई क्यों नी तो इन्हें डराई समझाई के भाई अरे उन्हें जूता नहीं लावना भाई विश्वास। तो देखो कितनी बड़ी बात है, मैंने थोड़ो स्टार्टिंग में संस्कार मिल जाए मतलब अरे बच्चों तो अपना वो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: चीज।
1: हाँ तो आओ भगत भी अठे, मान सम्मान भी, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश। तो
0: हुकुम अटारे अपना ही देखो सा के किन्नो भी मान लो कोई मंगलो है या गाड़ी है नी तो उन्हें पूछ किन्नी है तो वो नहीं के मारी है वो भी अपनी है, अगलारी भागीलारी भेड़ ले रही है कि मंगलो किन्नो है के अपना है हुकुम
1: अपनो है बिल्कुल।
0: चीज दूजा कटी नहीं मिले मन
1: बिल्कुल, वो जो अपनापन है जो वो अपनी भाषा के माँ अपने संस्कार माँ शामिल है सा।
0: हुकुम हुकुम
1: तो लूणी बोल रहे होते तो लूणी तो नदी है, लूणी जकी नदी को नाम है तो किकर अकट आ रही है लूणी नदी के बारे में बताओ सा थोड़ो सो।
0: लूणी नदी तो हुकुम है जो अजमेर गने जो नागपाड़ी वाले सा वटू आ रोन वे तो आगे आता आता हूं 3-4 रास्ता फंडे सा है ना।
1: अच्छा
0: और आगे आओ तो मोरेटे बलूतरा आओ तो हैंग भेड़ी हो जाए सा।
1: अच्छा
0: चार रास्ता ठीक है, एक नाम बंडी है न हुंकड़ी है लूणी है न तीन है भेड़ी हो जाए सा नदी वटे
1: तीन नदियां है बरसाती नदी है
0: आगे हुकुम।
1: वाह जी वाह, अच्छी जानकारी थे दी। तो आज के सुनावार कौन कौन लोग कार्यक्रम सुन लाग रहे होते?
0: हाँ कार्यक्रम तो मैं मोरे में नंबर हमार मने मैं तो भूल गया हुकुम याद रहे मोरे हाथी ऐसा पहला कलर मोल लाल प्रताप साहब।
1: हाँ हाँ
0: तो पास फायदे लगा तो फोन नंबर आता लागू सा
1: बिल्कुल
0: क्या फोन आप बीजी घणो रहे हुकुम क्योंकि मोरे हाथी घना है हजारों ऐसा कल्याण में लागूड़ा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सारा लोग जुड़े रहे कार्यक्रम
0: हुकुम हुकुम हुकुम।
1: तो आज के सुना था
0: आज तो हुकुम आपकी पसंद तो हुना दो कालू राम प्रताप साहब रो कोई
1: बिल्कुल
0: उन्होंने कोई गायड़ो कोई गिदड़ो वेलता
1: बिल्कुल सुनो सा।

तो सा आज रो हेलो गवर्नमेंट कार्यक्रम किशोक लागियो थारे कागदिया में मेल में जरूर लिखियो। आज रे कार्यक्रम रा संयोजक हा नवीन सिसोदिया एर अबे श्रीपाल ने ई बात रे सागे सीख देओ सा के प्रीत करो तो इसी करो कोई रंग में रंग मिल जाए, प्रीत करो तो इसी करो कोई रंग में रंग मिल जाए, जूं हल्दी चूनो मिल्या लाल रंग हो जाए। राम राम सा, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो गोरबंद, प्रस्तुति श्रीपाल सारस्वत की और संयोजन नवीन सिसोदिया का। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात के 10 बज चुके हैं, आइए कार्यक्रम सुने गीत गंगा।

नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम के साथ सभी सुनने वालों को रोहिता शर्मा की ओर से। बात शुरू करें बशीर बद्र के इस शेर के साथ कि मुंतजिर फूल में खुशबू की तरह हूँ कब से, मुंतजिर फूल में खुशबू की तरह हूँ कब से, कोई झोंके की तरह आए उड़ा कर ले जाए, और मैं मोहब्बत से महकता हुआ खत हूँ मुझको जिंदगी अपनी किताबों में दबा कर ले जाए। दोस्तों, दिन आज का एक इतने बड़े व्यक्तित्व का, जिन्होंने अपने लेखन से, अपने अभिनय से, अपने निर्देशन से भारत की कम से कम 8-10 भाषाओं में अपना योगदान दिया। जी हां, गिरीश कारनाट, लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक, नाटककार, आज के दिन आपका जन्म हुआ 19 मई 1938 को, और 10 जून 2019 को 81 वर्ष की आयु में आप इस फानी दुनिया से चले गए। गिरीश कर्नाट को पद्मश्री, पद्मभूषण, फिल्म अवार्ड 1988 में साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित

ज्ञानपीठ पुरस्कार कन्नड़ साहित्य में सेवा हेतु दिया गया। आपने हिंदी, कन्नड़, असमिया, मराठी, तेलुगु इन भाषाओं में कार्य किया। हिंदी फिल्म का ये जो गीत आपने अभी सुना, इस फिल्म उत्सव का आपने निर्देशन किया, याद करें आपको। और गीत गंगा कार्यक्रम में इंतजार करें ठीक 10 बजे से आई हुई आपकी मेल का।

गीत आपने सुना अभी लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में, बसंत देव की बोल थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। उत्सव फिल्म का नाम था जिसे निर्देशित किया गिरीश कारनाट ने। आपको याद होगा टीवी सीरियल मालगुडी डेज, इस धारावाहिक में गिरीश कारनाट ने स्वामी जो पात्र है उसके पिता का अभिनय किया था। बहरहाल गीत गंगा कार्यक्रम में स्वागत आप सभी का, आपके

ईमेल जो हमें 10 बजे से मिले उन्हें हम शामिल करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपने जो संदेश भेजे वो भी हम शामिल करेंगे, कुछ ख़त हम शामिल करेंगे, लेकिन आप इन सब में से एक ही माध्यम का प्रयोग करेंगे ऐसा हम विश्वास रखते हैं। बहरहाल गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। 7Z से ओम प्रकाश ओझा, कांता ओझा, राजलक्ष्मी ओझा, शक्ति ओझा और इनके परिवार के सभी लोग, दिनेश ओझा, इंदु ओझा आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारीलाल शर्मा, ममता, मीतू, किनू, अक्षय, महावीर लोरा और इनके बहुत सारे साथी जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले जो श्रोता हैं, जिनके संदेश हमें किसी भी माध्यम से मिले हैं, हम उन्हें शामिल कर रहे हैं। आप सुनते रहें ये कार्यक्रम गीत गंगा। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और इनके बहुत सारे दोस्त, दतरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, कलाना भादरा राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, उद्धव कड़वासरा और इनके दोस्त लीलाधर स्वामी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। संदेश गोहर ने हमें संदेश भेजा अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से। संदेश गोहर, श्रीमती वंदना, मयंक, तन्वी, जयपाल और इनके परिवार के सभी सदस्य, कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम श्रोताओं से हमारी इल्तजा ये भी बार बार रहती है कि आप अपना नाम हमें बिल्कुल सही जो नाम आप इस्तेमाल करते हैं वो लिख के भेजें, ताकि हम उसे अच्छे से शामिल कर पाएं और आपके जो सभी दोस्त सुनने वाले हैं उसे उसी इज्जत के साथ सुन पाएं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरसान, अब्बान और इनके परिवार के सभी लोग, अंकित कागड़ा ने हमें मेल किया हरियाणा से, साथ में आपके मोनी, प्रिंस बोध, सीताराम और साहिल काकड़ा, आपका भी हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। ये मेल मिला हमें MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव और SK पप्पी का। राजू टुटेजा खुशदिल ने मेल किया हमें गांव गोविंदगढ़ माझीवाला शिकरणपुर राजस्थान से, साथ में आपके हैं उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मन्नू, शिव सेठी, करणपुरी, पाल मिस्त्री करणपुरी, स्माइल टुटेजा और पवन कुमार गुजर। गांव 34 STG पीलीबंगा से प्रेमी बिशनलाल मेहरा, अमन, समीर, रितु। चालकला पंजाब से अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा और राजा बंगा के साथ कुलविंदर कौर और अंबा चाहल। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी ने मेल किया, लिखते हैं किसी भी गाने में आप हमें शामिल कर लें। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बहरहाल मेल मिला हमें नोहर से डॉक्टर राकेश शर्मा, मधु और प्रांजल का। गाना आप सुनना चाहते हैं जानिसार अख्तर के बोल, मुकेश की आवाज़, खय्याम की मौसीकी, प्यासे दिल फिल्म से। आइए सुने आपकी पसंद का ये गाना।

गीत अभी आपने सुना जानिसार अख्तर का, मेल मिला ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से, पुखराज बड़ गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का। लिखते हैं प्रेम रोग फिल्म का गाना हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल आप सुनते रहें कार्यक्रम, गीत हम आपको सुनवाएंगे। सांगली से हमारे कुछ श्रोता हैं, नाम जिनका साफ हम पढ़ नहीं पा रहे, ये हमें संदेश मिला सदर बाजार कुरावली से। अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का। गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण ड्रिंडबा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, किरुडीबाल और इनके बहुत सारे दोस्त। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डाल का मिठा और इनके परिवार के सभी लोग। गंज डुंडवारा से शमशूल कमर राही, शाहिना फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु उस्मान और कलीम अंसारी। गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा मुकेश, दिनेश अंशु और बलदेव कटारिया। गांव न्यूला रामपुरा से सुरेंद्र डीडन, सकीला, संदीप, अनवर, अक्कू और इनके परिवार के लोग। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना और निवान शर्मा।

लक्सर, हरिद्वार आज़ाद नगर से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहाँ का संदेश हमें मिला। गांव घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढूकिया और ईवा धारणिया। 5 BNPM कीकर वाली जोड़ी से इनके साथ हैं अशोक मांझू, सिद्धार्थ मांझू और इनके बहुत सारे दोस्त। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और कपिल मेहरा का संदेश हमें मिल चुका है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार का संदेश भी हमें प्राप्त हो गया है। आप सब दोस्त सुनिए प्रेम रोग फिल्म का ये गाना।

संतोष आनंद का गाना भी आपने सुना, ये मेला में मिला है। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े का। राजकुमार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आप सुनना चाहते हैं गाना, हम आपको सुनवाएंगे। आप सुनते रहें कार्यक्रम गीत गंगा। मेला में मिला है हमारे बहुत सारे श्रोताओं के साथ, लिखते हैं प्यार भरी नमस्ते। कार्यक्रम की शुरुआत गिरीश कर्नाड के जन्मदिन से, जयंती से आपने की, अच्छा लगा। एक शानदार अभिनेता का भारतीय फिल्म जगत में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। बिल्कुल, गिरीश कर्नाड का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत बड़ा। आज चूंकि उनका दिन था जयंती का, सो हमने शामिल किया। लिखते हैं शानदार प्रस्तुति गर्मी को ठंडक में बदल रही है, उन्हीं की फिल्म का एक गाना आप हमें सुनवाएं। बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे। ईमेल मिला पवन कटारिया, शालू कटारिया और समीर कटारिया का शिकरणपुर से। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। जलालाबाद बैस से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने मेल किया। ये मेल मिला हमें नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज, हिमांशु, पवन और इनके परिवार के सभी लोग। ढाबा झलार से मेल हमें मिला है अनिल कौशिक और इनके परिवार के सभी लोग। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी का मेल हमें मिला। ये मेल हमें किया है बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यन्दु संस्कृति और पौरुष ने। गाना जो आप सुनना चाहते हैं वो गाना हम आपको सुनवाएंगे। आप सुनते रहें कार्यक्रम। सुरेश नारंग ने मेल किया हमें सहारनपुर चंद्रनगर से, सुरेश नारंग, आशु, सोनाली और इनके परिवार के सभी लोग। ये मेल हमें मिला है कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर, यमेकर, प्रमोद, प्रदीप और इनके बहुत सारे दोस्त। सुरेश नारंग का मेल जब हमने एक शामिल कर लिया है तो फिर उसके बाद में सुरेश भाई आप अगर यूं मेल करते रहेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी। ये मेल मिला हमें बहादुर मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, जावेद अंसारी, सूरज, सूरज अख्तर, जासमीन और इनके परिवार के सभी लोग। मेल मिला हमें जाखोद से शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। तुलसी मस्किन का मेल हमें मिल चुका है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना। ये मेल मिला हमें शिवाजी नगर वड़ाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर इंदिरा ताई, छकुली ताई खोबरखेड़े, खांडवी बुलढाणा से इनके साथ हैं दीपावली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े, थिलोरी दरियापुर से सुनैना पवन भोंडे, तनुज पवन भोंडे और इनके बहुत सारे मित्र। लिखते हैं आपकी पसंद के किसी भी गाने में हमें शामिल करें। बिल्कुल, आप हमारे वे दोस्त जो राजकुमार फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं उसमें शामिल हैं। रायसिंह नगर से सुनील डाल, सोहन लाल जी जांगीड, परवीन सरावगी, नरसी सिंवर, चेतन राम जी जोशन जी, वेद प्रकाश जी मिड्डा, धनराज भांभू और बीकानेर से लक्षिता वर्मा के साथ सुमन जी ने हमें मेल किया है। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करें कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। कल्लन

खंडवा से कौसर भी पंवार, हसीना, हिना, अलमास, साफिया और बीबी आयत फातिमा का मेल हमें मिल चुका है। आप सब दोस्त सुनिए राजकुमार फिल्म का ये गाना।

असर जयपुरी का गाना भी आपने सुना, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की थी, मौसीकार शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम राजकुमार। मेल मिला हमें कवाई सालपुरा ज़िला 12 राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव का। लिखते हैं, गीत गंगा कार्यक्रम में गिरीश कारनाट के बारे में अपने जानकारी दी, अच्छा लगा हमें अपने सिनेमा के महत्वपूर्ण अभिनेता, निर्देशक, नाटककार, कन्नड़ और अंग्रेजी के साथ अन्य कई भाषाओं में अपने लेखन भी किया और अभिनय भी किया, साथ ही नाटकों की दुनिया में आपका बड़ा नाम। ययाति से शुरू हुई आपकी ये यात्रा खूबसूरत रही। आज इनकी फिल्म स्वामी का गाना अगर आप हमें सुनवाएं तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे ये गाना, आप सुनते रहें कार्यक्रम। मेल हमारे श्रोताओं के हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं। ये मेल हमें किया सादुल शहर से रामकुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड ने। लिखते हैं, चलते रास्ते में भी इश्क हो जाता है, तुम सफर में जरा कदम संभाल के रखना। रिवार्ड साहब की मेल में हमेशा कोई ना कोई शेर जरूर होता है कि मोहब्बत नजर बांध देती है वरना, मोहब्बत नजर बांध देती है वरना, बहुत थे हसी दिल लगाने के काबिल। गाना आप सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में ताजमहल फिल्म का, वो गाना भी रिवार्ड साहब हम आपको सुनवाएंगे। आप बस कार्यक्रम सुनते रहें इसी प्यार से। हमारे श्रोताओं की मेल हमारे पास पहुंच रहे हैं। ये मेल हमें किया है मुकेश कश्यप ने, और एक नहीं बल्कि तीन मेल इन्होंने किए हैं। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक साथ तीन मेल कर डाले, बधाई के काबिल हैं आप। जिला मुरादाबाद, गांव दुलपुर, यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ये मेला में किया है पहाड़गंज मुल्तानी ढाड़ा से अनिल मोहन, उषा मोहन, ठिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक और इनके परिवार के सभी लोग। मेल मिला हमें जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो का। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा यूपी से एम फारूक शेख, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज और बीबी मुस्कान का, आपका भी हम धन्यवाद करें। विनोद कुमार ने मेल हमें किया है गांव खोखरा वाली से, विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन ने। लिखते हैं, गीत गंगा लाइव सुन रहे हैं, अच्छा हमें लग रहा है, इज्जत फिल्म का गाना हमें आप सुनवा दें। बिल्कुल, ये गाना भी विनोद भाई आपको हम सुनवाएंगे, बस आप कार्यक्रम सुनते रहें। 5 MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल का मेल हमें मिला है, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करें। ये मेल हमें किया है बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा का प्यार भरा मेल हमें मिला है, साथ में विकास इंदौरा, गैरी और बीबी दिव्या इंदौरा। बहुत बहुत धन्यवाद इंदौरा साहब, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपने हमें मेल किया और एक ही मेल किया, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासु, अर्णव और सत्यम आनंद का मेल मिला आपके साथ है। बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ये मेल मिला हमें जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी गांव लोहिडी

से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघविंदर, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रुनिका और चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक भी आपके साथ शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। लीजिए गाना सुनिए अपनी पसंद का।

मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने गुलजार का ये गाना सुना स्वयंवर फिल्म से। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा भाई, सुच्चा सिंह पाठक ने हमें मेल किया। आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करें। गाना जो आप सुनना चाहते हैं उम्मीद फिल्म का, वो गाना भी हम आपको सुनवाएंगे, बस आप कार्यक्रम सुनते रहें। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने हमें मेल किया। ये मेल हमें मिला है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद पूर्णत, नेहा जैन, दीपक मयंक पूर्णत, चेतन नाटा और इनके परिवार के सभी लोग। आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करें कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। चंडीगढ़ से हमें मेल मिला भाई सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करें कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपने कार्यक्रम में मेल किया। चोटाला हरियाणा से दारा पंडित का मेल हमें मिल चुका है, साथ में आपके प्रियंका शर्मा और संजय शर्मा। गाना जो आप सुनना चाहते हैं दारा भाई, वो भी आपको हम सुनवाएंगे, बस आप कार्यक्रम सुनते रहें। मेल हमारे श्रोताओं के हमें लगातार मिल रहे हैं, साथ ही हम व्हाट्सएप संदेश भी आपके तमाम पढ़ रहे हैं जितने भी आपने हमें भेजे हैं। बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया का

संदेश हमें मिला फव्वारा चौक चूरू राजस्थान से, संदीप सिंह सोनगरा, प्राची, सोमल, कार्तिक और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश मिला पद्मा टाकीज नीपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन और मंगला बेन शाह का। चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन और वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोसन। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खिरवाल और इनके सभी दोस्त। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू का मेल हमें मिला। मानपुरा साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान का मेल हमें मिला है। जनकपुरी के हमारे दोस्तों का मेल हमने शामिल कर लिया, संदेश हम नहीं पढ़ेंगे उनका। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना का मेल भी हमने पढ़ लिया। और हमें मेल मिला घणी खम्मा के साथ पायला कला जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापत, माणक, उषा बाला, देवी प्रजापत और इनके परिवार के सभी लोग। मंसूरी रेडियो श्रोता संघ बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का मेल हमें मिला। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहानकर, निर्मला नुहानकर, विशाल नुहानकर, मलकापुर से नारायण इंगले, नारायण खर्चे, आशीष और इनके बहुत सारे दोस्त। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री मैत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब, रामनिवास अग्रवाल और इनके बहुत सारे दोस्तों ने हमें मेल किया है, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चेन्नई महाराष्ट्र में कार्यक्रम सुन रहे हैं प्रियंका गणेश शर्मा और युक्ति और आरब, आप सब सुनते रहें कार्यक्रम और सुनिए ये प्यारा सा गाना रेवाड़ साहब की पसंद का।

साहिर का गाना अभी आपने सुना, मेल हमारे पास चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का मिला। लिखते हैं नमस्कार, प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। 10 बजे ठीक आपने मेल हमें किया, आपका धन्यवाद। कि किसी का बुरा सोचे बिना उसका भला करो, क्योंकि किसी ने कहा है जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई। और आप जो गाना सुनना चाहते हैं किस्मत फिल्म का।

साहिर का गाना अभी आपने सुना। मेल हमारे पास चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का मिला। लिखते हैं, नमस्कार, प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। 10 बजे ठीक आपने मेल हमें किया, आपका धन्यवाद। कि किसी का बुरा सोचे बिना उसका भला करो, क्योंकि किसी ने कहा है, जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई। और आप जो गाना सुनना चाहते हैं किस्मत फिल्म का, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। आप सुनते रहें कार्यक्रम। बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का मेल हमें मिला। मेल मिला हमें गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन और वीरेन पांड्या का। गाना आपकी पसंद का आप सुन चुके हैं। ये मेल किया हमें सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयबीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज कार्यक्रम सुन रहे हैं। भूपेंद्र सुथार संगरिया में, वंदना तिवारी इंदौर में और कमल भाई सूरतगढ़ में, आपका भी हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं। वाड़ी खामगाम से अनंता वाडे, रामेश्वर वाडे, शुभम साक्षी और इनके परिवार के लोग। ढाबा जलार में कार्यक्रम शोभा और इनके परिवार के लोग सुन रहे हैं, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करें। मेल आपने किया। ऐसम जावेद शगुफ्ता अंजुम ने गुमला झारखंड से हमें मेल किया, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करें। ये मेल हमें मिला है दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन गेले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले ने। पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा दिवांगन का मेल भी हमें मिल चुका है। ये मेल हमें मिला गांव ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का, आपका भी हम धन्यवाद करें। ये मेल हमें किया है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर ने। पूनम ज्योति शिवांश वर्मा के साथ दीपेश ने हमें पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से मेल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राठौड़ का मेल हमें मिला है गांधीनगर गुजरात से, सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा। गाना सुनिए किस्मत फिल्म का आशा भोसले की आवाज़ में।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने किस्मत फिल्म का गाना नूर देवासी का लिखा ओ पी नैयर की मौसीकी में सुना। आज थोड़ा देरी से मेल मिला रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी का, साथ में हिमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी लिखते हैं। आज थोड़ा देरी से आए हैं, कुछ मेहमान आ गए थे, मेहमान भी ज़रूरी है। गाना आप सुनना चाहते हैं भाभी फिल्म का चल उड़ जा रहे पंछी, बिल्कुल आप पक्षी के उड़ने से पहले आ गए कार्यक्रम में, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप कार्यक्रम में शामिल हुए। शिवपुरी में कार्यक्रम सुन रही हैं मोनिका जैन और इनके परिवार के सभी लोग। कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है इस बात का हम यकीन मानकर चलते हैं जब भी कार्यक्रम करते हैं। बहरहाल मेल हमारे श्रोताओं के और संदेश हमारे श्रोताओं के हमें लगातार मिल रहे हैं। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ ने पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से मेल हमें किया, पहली बार आपने हिंदी में लिखा, मेल हमें किया, आपका धन्यवाद। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान और मोहम्मद उस्मान, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, और ये मेल हमें किया हितेंद्र दास ने असम से, आपका भी धन्यवाद। आरायण से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल हमारे पुराने श्रोता, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल और इनके परिवार के सभी श्रोता सदस्यों के साथ कार्यक्रम में शामिल है। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, ऊपरकोट मोहल्ला चुखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज और इनके बहुत सारे दोस्त, कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय ने मेल तो हमें कर दिया गीत गंगा में, लेकिन कार्यक्रम गोरबंद इन्हें याद रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविधा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल, ढाणी लाल खां से जावेद खां, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, मुखराम, आरिफ खान, ईयान खान, अरशद और इनके परिवार के सभी लोग। ये मेल हमें किया है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इसप्रीत शर्मा, हीरपाल कौर, सोनिया और इनके साथ वैश्पा शर्मा। मोहल्ला मंसूर गंजवारा से आफ्ताब भाई का मेल हमने शामिल किया, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा का मेल भी हमने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो और नानक।

इसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त रोहिता शर्मा को अनुमति दें, इस बात के साथ कि भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर न मिलेगा, और फिर याद बहुत आएगी जुल्फों की घनी शाम, जब धूप में साया कोई सर पर न मिलेगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गंगा। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात के 11 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया

0: के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the 5th and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination